0: सारे सारे ही
1: तेरी परी गोविंद मिलन की तेरी परी।
0: हुण आपां व्यापार करन आया, एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा वचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसीं व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उहनूं लोकी कहिंदे नहीं इहनूं व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चलिए। तां वा गुरमुख प्यारिओ के कुछ ता व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ, लाहा व्यापारी ते ताई किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया दी रास पा के दित्ती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दित्ता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर दी बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईआं, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच ओथो तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे भजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखीए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैंने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलना किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलना किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलना जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत
1: नाम वाहे गुरु
0: भैनों गज के मेरिया धियां गज के जरा बोल

0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ, बोलो कहो नानक ताके, मैं ओदे तो बलहार जाना, स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ, कलयुग में पाया जेडे कलयुग विच जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा, इन्हें टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी, मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग विच वी कहिंदा सतनाम श्री वाहे, ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर कार्ज मेरे सतगुरु सवार दिंदे गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहे। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नूं टका के रखियो, मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
0: वाह।
1: नाती धोती संभही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इथे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे बचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभही, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई, जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभही सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है, वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर की बंदगी की गल आई उदों बेहोश होके सौं गया। जिथे नितनेम की गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम की गल आई, सिमरन की गल आई, उस गलों बेहोश होके ए जीव सौं गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होए, नाता होए, धोता होए, परमेश्वर की बंदगी करता होए। महापुरश बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने समझणा फिर, ते उहने आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौंजीए ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, ओदे विच बीज पा दिता होवे, ओदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर ओदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर ओ फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फेर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना ओ बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां एक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौं जाईए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इतना दे बचन करदे ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंगदी, गई कथूरी गंध,
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी, कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओ फिर उड गई सौण दा सदका, ते हिंग दी जदों हिंग दी बो आउंदी आ, जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने, हिंग दी बो आ रही, कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओ ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबो ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां ही रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़दिया बहिंदिया सौंदिया ए मुंह जिहड़ा वाहेगुरु निकलना सी, जिहड़ी परमेश्वर का मिठा सुभा सी, ओह उहदे मुंह माथे त्रिकुट्टी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

0: उन्हें आखिया फिर तेरे को पैसे थोड़े ने, उन्हें कहा पैसे की भी कोई चिंता नहीं, उन्हें कहा वड्डी गड्डी की गल है, उन्हें कहा गड्डी वड्डी भी कोई गल नहीं, सारे पदार्थ जिन्हों तो आप सड़के काले हो। बाबे फरीद ने पूछा तो आख्या नहीं भोलीए जे तेरे नूं कोई दुख इन्हां दुखां विचों नहीं तो मैनू दस फिर तू काली क्यों है, काली कोयल तू कित गुण काली। ते करमां वाली सी जिन्हें आख्या बाबा कोई घर का दुख नहीं, कोई बहुती वड्डे बन का दुख नहीं, मैनू दुख आ ते इस गल दा काली कोयल तू कित गुण काली। उन्हें आख्या अपने प्रीतम के मैं उहदे विछोड़े च सड़के काली हुई। कोई यह गल आखे अज ठंडे होके आपां कई बार आउंदे ने ना, कई बार वेखो बड़े ठंडे होके आउंदे आ, ते जिन्हों पुछ के वेख लो अज बड़े होके लैंदा है, कहिंदा 10 साल हो गए ने ग्रीन कार्ड नहीं बनिया, मां प्यो तो विछड़िया तां होके आउंदे। ओ प्यारे 10 साल लई मां प्यो तो विछड़िया ते होके आउंदे आ, मगर अनंत जन्म तो विछड़े परमेश्वर तो। जिहड़ा ऐसा प्यारा प्यो आ जिन्हें घर दिता, मां दिती, पुत दिते, परमेश्वर ने हर दौलत दिती, उस परमेश्वर तो विछड़िया सानू होके क्यों नहीं आउंदे। इथे मेरे साहब जी कहिंदे ने बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, तू ते विछोड़िया पातशाह है, जिन्हां दे हिरदे दे विच विछोड़े रूपी सल नहीं लगदा, जिन्हां दे हिरदे विचों ए आवाजां नहीं आउंदियां बहुत जन्म विछड़े थे माधो, जिन्हें ए नहीं कहिंदे कर कृपा मिलो राम, ओ कोई बंदे नहीं, ओ ते मरे हुए मुर्दे तुरे फिरदे ने, उन्हां नूं मसाण समझो। मेरे साहब जी कहिंदे ने जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान, उन्हां नूं मड़ियां जानो वसदा घर ना समझो, वसदे घर विच ते गुरमुख प्यारियो जिन्हां मड़ियां दे विच फर्क आ, इन्ना फर्क उन्हां दे जीवन विच वेखो जिन्हां नूं इह पता ही नहीं असीं रब तो विछड़े आ। बोलो रब तो विछड़े, फिर बोलो रब तो विछड़े। जिन्हां नूं इह चेता भुल गया कि असीं रब तो विछड़े आ, ओह जिउंदे नहीं, ओह मसान ने। मेरा सतगुरु कृपा करे 28-29 तरीक वाला दिन विछोड़े खत्म करने वाला दिन है, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं ढीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। सतगुरु की कृपा का सदका, गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया के मालक की कृपा का सदका, अकाफी नाम बीबी जगप्रीत कौर जी, बीबी सुरिंदर कौर पाल जी, बीबी प्रीत इंदर कौर जी, ए एक एक सिकरमा वाले प्यो दियां तियां लगदियां ने, भागा वाला प्यो आ जिदियां तियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बहुता एक सानू वहम आ कि जे अमृत छकाता जी मुंडे नहीं लभने, वाह जी वाह आखो सतनाम श्री, बड़ा साडे सिर दे उते थौड़ा चलदा है। प्यारियो अजे ते तुसीं मंगणियां ते तुसीं वेखणे ने लोकां दे स्टोर, तुसीं वेखणियां लोकां दीआं गड्डियां, जदों इह धी बण गई ना गुरु गोबिंद सिंह साहब दी ते फिर वेखियो पुत लभ के दिंदा, फिर वेखियो मेरा मालक उसे घर ही खड़ के रिश्ता अपनी धी दा करदा। जिदन तो कोई बच्ची अमृत छक लैंदी आ उहदे प्यो दा नाम की हो जांदा है, फिर एक बार आखो गुरु, ते फिर गुरु गोबिंद सिंह वर्गी पवित्र आत्मा ते सियाणा के साहिब दिमाग है, दिमाग साहिब वाला सब तो सियाणा पिता अपनी धी नूं किते खूह च नहीं सुट्टन लगा। ए ना मन विच सोचिया करो जी बच्चियां दा आनंद कार्ज करना किथे, आ सानू भी वड्डे स्टोर तो दो बच्चियां ने अमृत छकना सी, अज हौली जी कहिंदे जी अमृत छकना ते जीत करदा सी, साडे मन च एक सोच आ, मैं मैनू पता जिहड़ी सोच आ, कहिंदे की सोच आ तुसी दस दिओ, मैं कहा जी इहो ही सोच होगी भी इन्हां नूं मंगांगे किथे। प्यारियो अमृतधारी बच्चियां नूं अमृतधारी बच्चियां दे नाल जदों आनंद कार्ज कर दईए ना ते फिर 100 चों 100% चिंता मां प्यो दी लथ जांदी आ, क्योंकि जवाई शराब नहीं पींदा, जवाई जुआ नहीं खेडदा, जवाई कुकर्म नहीं करदा, उहदे लड़ लाई आ जिहड़ा भी अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह साहब दा पुत बणिआ ते भरोसे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे च बांह फड़ाई आ। इस करके आ बीबियां करमां वालियां भैणां ने, बीबी रणजीत कौर, जरनैल सिंह, सुरिंदर कौर, ए नाम सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया के मालक की कृपा दे नाल आ गए ने। होर कृपा करे मेरा सतगुरु तुहाडे विच वड्डी गिणती विच अमृत छकण लई आपां तैयार होईए। 29 तरीक नूं हुणे सुणिया वा ना कि जिहड़ा विछड़िया वा उह मसान आ जीवन नहीं, ते आओ गुरमुख प्यारे आखां जीवां, बोलो आखां, एक बार आख दिओ गज के आखां ते विसरे, आओ विछोड़े दे सल नूं भुलाईए, जुड़ जाइए उहदे नाल, जिउंदे हो जाइए, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत छक के गुरु वाले बनीए, सतगुरु दे लड़ लगीए। 29 तरीक सवेरे 7 बजे केसी इशनान करके साहिबां दी हजूरी च आउणा है, ते 7 बजे आओगे नगुरे, ते जदों 10:30-11 बजे निकलोगे जन्म बदल चुकिया होगा, जीवन बदल चुकया होगा, प्यो मिल चुकया होगा, मां मिल चुकी होगी, परिवार मिल चुकया होगा, पंज ककार मिल चुके होंगे, नित नेम मिल चुकया होगा, जिसनो बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही। जदो आए सो मंगते बन के अमृत, मगर जदो नितनेम लैके जाओगे पातशाहां दे पातशाह बन के जाओगे, भुलाना च तारनिया असीस देनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवन गुरपद साद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
0: अंदरों लुड़के आखो आ

गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूरख किश दीजे प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे।

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हो गई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखा ओदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

लोभ लभाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर कीता है, कहिंदे एक दिन फिर ओ सुपने विच आ गया। आखो सतनाम श्री, आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च, सुपने आया, बोलो सुपने। ए बड़े दिनां दी कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, ओ सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन दीदार दे के कोल बह के चले गया। सुपने आया पी गया, जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच ही झलक विखा के चले गया। हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई तेरे कोल, ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा किथे आ। हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ, धन सो

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसी चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थान दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर

बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एव हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस। बोलो एहो अमृत की आ हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोए दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा। ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहिब कहिंदे ने इह पक्की गल आ जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़ के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गवन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ गुरु दी पनाह विच आउंदी आ गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गमन मिटे। बोलो आवा गमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवान है अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दियो सेवा दियो। आवा गमन मिटे। बोलो आवा कदों प्रभ सेव जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया जदों आप त्याग शरण गुरदेव आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं। उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इहनूं अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया। मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वां कि उन्हां दा आवागमन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां सिमरन बड़ा करदे हां जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो

0: गे पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ये तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थाओ ना ही जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनूं मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दियां लत्तां खिंचदे ही एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दे एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दे इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तो लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारे नूं बगाने समझिया हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोड़ नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैये जी दे वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनूं कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बहिके एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकण वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बहिके लंगर छकण वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलो जिदन तो मैं नीवा पान लै लिया परमेश्वर कोलो ते मन जड़ा खराब करदा सी ए वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आखे सब कोए बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आखे एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगण आरी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारे ओ किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहब दे अगे ओ साहब दे अगे जाओगे जेड़ा साहब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोट जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नू दे के खिमा ओदे कोलो लै लिया उदन तो खरा खरा आके सब कोए जे मके गया वा ते अंदरों बारो एक सा ओ अखां वालियां नू नजर आ गया उन्हां कहा खरा आ गया ओ पैरी पै गए जिन्हां नू खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालियां नू सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालियां नू सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਤੋ

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आद सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पे सच।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगा सच खैती सच नानक खुशी भी सच

मेरी जल बुझी शीतल कोई मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जियो ध्यान दिया दे। असी पढ़ने के हमारी प्यारी हुने भाई साहब पढ़ के गए ने हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। जा असी पढ़ने हजूर दे अमृत बचन, अमृत बचन साध की बाणी। उते शब्द वरते ने अमृत बचन गुरु की बाणी नू। नाम भी अमृत है, बाणी भी अमृत है। ते देखो कैसी रोचक हजूर ने कृपा की। इको साडा दुखांत है, सतगुरु मेर करे सानू समत बख्शे। कई बारी अधूरा ज्ञान, कोई भी चीज अधूरी जड़ी है ना बंदे नू बहुत दुख देंदी है। कच्चा भोजन जड़ा है ना वह बंदे नू दुखदाई कर देंदा है। अधूरी कविता कई बारी अंदर नू खटकदी है भी जे किते बोल पूरे हुंदे ते। अधूरा ज्ञान जड़ा है कोई बंदे नू लै डुबदा है। हुण देखो असीं जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे दर्शन करने आ, नाम भी अमृत है, बाणी भी अमृत है। ते कृपालू सतगुरु नू पुछिया महाराज अमृत हुंदा किथे वे, ते उन्होंने गल होर मुका दिती। कहन लगे बार न भजी अमृत तेरे शरीर विच ही। असीं पढ़ने आ नौनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं, इसका विश्राम है तां शरीर विच रहिंदा। हजूर ने एक तुक होर वरती है, कहन लगे प्यारे के देख घर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरम दा भरम पुलाया। कहन लगे तेरे अंदर अमृत है पर तेनू मिर्ग दी तरह समझ नहीं पई के कस्तूरी ओदी नाभी वेचे पर विचारा बाहर भटकदा पे। अंदर अमृत है, साहब ने एक होर वचन कीता है, मन रे ठिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे घर अमृत घट माही जियो। तेरे अंदर अमृत है। हुण वाकया सवाल ते उठने ने भी जे नाम अमृत है, जे बाणी अमृत है, जे अंदर बंदे दे अमृत है, ते फिर अमृत गुरु साहब ने कहा गुरु कोलो लई। असी तुक पढ़ने आ के अमृत पिया सतगुर दिया, अवर ना जाना दुआ तिया। गुरु ने अमृत दिता। हजूर दे एक तुक आउंदी है, जिस जलनित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो। हजूर ने कहा सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। गुर पूरा मेरी राख लई, अमृत नाम रिदा मैं दिनो जन्म जन्म की मैल गई। हुण एक सवाल इत्थे खड़ा हो गया भी जे अंदर अमृत है, एक पासे कहने अमृत सारा खजाना अंदर विच देही विच अमृत है, फिर गुरु कोलो केड़ा अमृत जाके लेना है। जे नाम अमृत है, बाणी अमृत है, ते फिर सतगुरु कोलो खंडे बाटे दी पौ लैण दी की जरूरत है। गुरमुखो इहदा उत्तर देण लई गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द कुछ आसरा लए ने। देखो जेड़ी चीज अंदर है कोई जरूरी नहीं हर एक बंदा उस चीज नू प्रगट कर सके। शब्दां तो उपर उठियो, केवल इनू गंभीरता नाल सोचियो। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक तोक आउंदी है, कहिंदे हर मर्द दे अंदर इस्त्री है ते हर इस्त्री विच मर्द बैठा होया है। इह गुरु ग्रंथ साहिब दी तोक है। हुण हैरानगी दी गल जदों अज इह मेरे सामने आया भी किवें सिद्ध करिए भी अंदर अमृत है ते बाहरों अमृत दी की लोड़ है। हर इस्त्री विच समर्था है, वह मर्द नू जन्म दे सकदी है। हर मर्द अंदर तत् ने उहदे लई इस्त्री पैदा हो सकती है, पर पैदा तां होणगे जे दोनों का समेल होवेगा, उस तो बिना नहीं। दोनों अंदर वो दात है। हजूर ने बाणी विच इक तोक कही है, कहन लगे नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। उस मालक कोल इन्नी समर्था है, नारी विच मर्द है, मर्द विच नारी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने इह खेड तां वापरदी है जे समेल होवे ते जो अंदर तत् छिपे ने वो शकल धारण करके प्रगट हो जाते ने। सच जाणो अंदर अमृत है, पर प्रगट तां होवेगा जे गुरु नाल तेरा सुमेल होवेगा, उस तो बिना नहीं। है सब कुछ, अंदर अमृत नहीं। मैं इस करके बेनती कर रहा क्योंकि बड़ा वड्डा सवाल है साडे लोग खास करके प्रचारी जा रहे ने। खंडे बाटे की पौल की लोड़ ही कोई नहीं जी, अमृत छकन की लोड़ है। मैं कल बेनती की सी अमृत नू फिरका प्रस्ती दे शब्द मत दियो। अमृत तां सिख दा जी दान है, अमृत नाल तां सिख ने जीना है। जे पुरख ते इत्री दा समेल है ते बच्चा शकल तीजा विचों धारण करदा है, वो गुरु के सिखा। जदों खंडे बाटे दा अमृत तेरे अंदर प्रवेश करेगा ते सच जानी तेरे अंदरों संत दा जन्म होवेगा, तेरे अंदरों गुरु के सिख दा जन्म।

शपर तुट में हो हरिता जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़ है वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे हैं हरिदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों आज फरीद कुजड़ा सैकों हाथियों फरीदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों अज फरीद कुजड़ा सैकों हाथियों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निघी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनो आप सरवण करदे आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। अज जो भगत फरीद साहब जी दे सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए इन्हां सलोकां विचों पहला सलोक फरीदा जान लब ता नेहो क्या लब ता कूड़ा नेह। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने अगर परमात्मा दे नाल तेरा प्यार है पर प्यार किसे गर्ज दे कारण है कहन लगे वो प्यार कदी भी तेरे मन दी बुराई नू तोएगा नहीं वो प्यार कदी भी परमात्मा रूपी मुकाम दे उते तेनों पुचाएगा नहीं क्योंकि प्यार है केवल गर्ज करके। और जिस दिन गर्ज पूरी होनी बंद होएगी उस दिन तेरा प्रेम ही टूट जाएगा। मेरा ते परमात्मा दा संबंध बनिया है पर विचकार एक गर्ज खड़ी है सानू दोवां नू जोड़न वाली विचकार एक गर्ज है। जीव परमात्मा दे नाल बज्जा है पर गर्ज दे तागे दे नाल गर्ज दी तंद दे नाल। जिस दिन परमात्मा गर्ज पूरी नहीं करेगा गर्ज पूरी हुंदिया देर लगेगी उसे दिन तेरा प्रेम चला जाएगा। इहदा मतलब तैनू अजे परमात्मा दी हकीकत असलीयत दे संबंध विच जानकारी नहीं मिली। हां इतनी जानकारी मिली है परमात्मा दे के नवाजदा है परमात्मा दा सुभा देना है तू गरजाऊ बन के उहदे नाल जुड़िया और केवल दुनियावी दाता दा गरजाऊ बन के क्योंकि उहदा सुभा ही देना है। ये समझ मिल जाए कि मेरा जीवन मनोरथ परमात्मा दे नाल जुड़ना है गर्ज विचों निकल जाएगी। कहन लगे जान लब ताने हो क्या अगर गरज है लोभ है लालच है तो फिर इनू प्यार कहन दी लोड़ भी की है। ये इस तरह ही समझ लो कि आप हथ दे अंदर हरे रंग दा चारा लेके अगे अगे चलदे जाओ ते गऊ तुहाडे मगर मगर तुरी आएगी। हथ विच चारा नजर नहीं आएगा ते गऊ तुहाडे मगर चलना बंद कर देगी। इस तरह ही समझ लो कि हथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा लेके चल रहे हो कुत्ता तुहाडे मगर मगर तुरिया रहेगा। तुहाडे हथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा नहीं है ते कुत्ता भी तुहाडे मगर नहीं है।
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਗਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਬੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤੀਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਸੌਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ

0: शायद किधरों गर्ज पूरी हो जाए। जिथों गर्ज पूरी हो जाए ओही एदा परमात्मा है, ओही एदा गुरु है। हकीकत विच जो गुरु ने ओदी समझ नहीं है, हकीकत विच जो परमात्मा है ओदी समझ नहीं है। फिर बेनती नूं दोहरा दिया, इत्थे इस तरह दे साडा जुड़ना है कि जिवें गऊ साडे हाथ विच हरे रंग दा चारा वेख के साडे मगर आ रही है, कुत्ता हाथ विच रोटी वेख के मगर मगर चलदा है, असीं गुरु कोलों दातां वेख के मगर मगर चल रहे हैं। गुरु धन दे रहा है, गुरु परिवार दे रहा है, गुरु तंदुरुस्ती दे रहा है, मगर मगर चल रहे हैं। जिस दिन गुरु कहन कि अजे समा नहीं आया, तेनू दात मिलेगी मिलेगी थोड़ी चरोकनी देर बाद, असीं गुरु दा दर छड़ देंगे। और मैं एक होर भी बेनती करदा चला, मन लो कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी इस तरह कह दें कि सजनों एक महीने वास्ते तुहानू कोई दात मिलेगी नहीं। कहिंदे नहीं है गुरु दा दर 24 घंटे खुला है, छिन छिन खुला है। मैं केवल उदाहरण बना के तुहाडे सामने अर्ज कर रहा। मन लो कि सतगुरु कह दें कि एक महीने वास्ते तुसी आउंदे रहो, सुनदे रहो, सेवा करदे रहो, पर दात नहीं मिलेगी। दात मिलेगी एक महीने दे बाद। मैनू एवें लगदा है चंद को मनुख ही रह जाणगे जो आउण वाले रहणगे, बाकी नहीं आउणगे। जद दात नहीं मिलनी, महीने बाद मिलनी है, तो फिर तेरा दरवाजा भी महीने बाद ही खड़कावांगे, तेनू नमस्कार भी महीने बाद ही करांगे। अज क्यों करी है, अज ते तू देना कुछ नहीं, तेरा ही ऐलान है अज मैं देना कुछ नहीं। तू अज देना नहीं ते अज फिर नमस्कार क्यों, अज देना नहीं ते अज तेरे दर ते आईए क्यों। जिस दिन देना शुरू करेगा साडा आउना शुरू होएगा, तो देना बंद कर देगा साडा आउना बंद हो जाएगा। परमात्मा दे नाल प्यार जो साडा बनिया है वो कोई बहुत उच्च क्वालिटी का प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर शर्त नहीं आती, बड़े ध्यान नाल समझ लेना, प्रेम दे अंदर शर्त नहीं आती। और जो शर्तां दे आधार दे उत्ते चलदा है वो प्रेम नहीं होंदा। अगर पति ते पत्नी शर्तां दे आधार ते चल रहे ने, रोटी तू पकाउनी है, भांडे मैं साफ करने ने, इस तरह मैं करना है, उस तरह तू करना है, ये प्रेम नहीं है। ये ते एग्रीमेंटेड लाइफ है, एक दूसरे दे नाल इकरारनामा कर लिया, तू इस तरह करना है, मैं इस तरह करना है। इकरारनामा टुटिया है तो परिवार टुट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर एक दूसरे तो कुर्बान होना होंदा है, प्रेम दे अंदर अपना आपा लुटाउना होंदा है, प्रेम दे अंदर शर्त नहीं होंदी। अक्सर पंजाबी दे बुजुर्ग वार पुराने बुजुर्ग कह देंदे ने प्रेम दे अगे नेम नहीं होंदे। अगर कोई नेम है, कोई शर्त है, तो खिमा चाहूंगा फिर प्रेम नहीं है, केवल तेरा इकरारनामा है, तेरा एग्रीमेंट है। एक मैं होर भी बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला, दुनिया दा सारा ही संबंध खड़ा है लैण दे उत्ते ते देण दे उत्ते। सारी दुनिया दा संबंध इस तरह ही खड़ा है। सब तो पहला अपने शरीर वल वेखिए, असीं साह बाहर कढ रहे हां तां ही दूसरा साह अंदर जा रहा है। अगर बाहर कढ़ना बंद कर दईए अंदर जाना बंद हो जाएगा, अगर अंदर लजाना बंद कर दईए तो जीवन दी लीला खत्म हो जाएगी।
1: श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, श्लोक शेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ है धनवरी, साहे लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनींदा, मोहं दिखाले आए, जिंद निमानी कड़ी है, हड्डां कूकड़ काए, शाहे लिखे ना चलनी, जिंदू को समझाए, जिंद बहुटी मरण।

दीनानाथ मया करू शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखु हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े।

ले चुका है, जिन्हें सवास गुजार चुका है, उन्हां पिछलियां बीतियां हुया सवासां दे अंदर ये वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर ये आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज व्यापार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अभेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, ते अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है, तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जाके तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लायो, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लायो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलते ने ते जान देवा पदार्थ मिलते ने। जो तंदुरुस्ती देने वाले ने पदार्थ वो चीजा वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, ते जो रोगी बनाउन वालियां ने चीजा वस्तुआं वो भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी है, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा वी तुहाडा है, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानूं खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसीं वैसिया द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां गुरुद्वारे दे अंदर मंदिर मस्जिद दे अंदर धर्म स्थानां दे उत्ते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नूं जो तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडी मर्जी है उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का तो कोई उजर मामला ही नहीं, धन का तो कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे के अंदर तो मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन तो कदी यह नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब के अंदर तो मैं पब के अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला तो मैं अपना जोर लाउना, धन तो इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो उहनूं सही पासे वरतो, इह तुहाडी समझ है। मैं इक बेनती होर भी चलो करदा चलां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजे दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण जिहदे कोल हथ फैला के मंगो, अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा दरवाजा नौ करे तुहाडी डोर खड़काए, तुसी पुछोगे ना तेरी मंग की, कपड़ा चाहिदा है, भोजन चाहिदा है, धन चाहिदा है, जुत्ती चाहिदी है, तेरी मंग की है, कोई मंगता आ जाए। हुण जद ए बोल बोले कि सा मत दीजे दयाल प्रभ जे तुम्हें अराधा, सतगुरु मैं अरदास लेके आया तेरे दर दे उते, ते जिहदे चरणा विच अरदास लेके गए उन्हें अगों पुछिया आउण वालिया तेरी अरदास की है, तेरी मंग की है।

इन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन श्लोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी हुई पूर, तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आन के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने, अगों हुण नेड़ा आया। अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है, अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म, मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साडे जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साडी शुरुआत जन्म तो होई, साडा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असी कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साडे विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असी अमीर हां, गरीब हां,

कदम है। कू कू के कह रहे ने सतगुरु के जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजे संग ही सो पी संग ना हुआ। पर की असी इस गल नू सतगुरु दी आवाज नू सुन के मन लिया साडा मन इस पासे नू मुड़ तुरिया। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहे ने सुख नाही बहुता तन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पुकार पुकार के कह रहे ने के सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। तो की साडे मन ने सतगुरु दी इस आवाज नू सुन लिया। पुकार पुकार के हजूर कह रहे ने नर अचेत पाप ते डर रे ते गुरु कह रहे ने नर अचेत ए बेहोशी दे अंदर चलन वाले मनुख पाप ते डर रे पाप करन लगा संकोच कर पै खा ना कर। तो की साडे मन ने ए आवाज सुन ली। जद बंदे दे मन दे अंदर शैतानियत चलदी होवे कोई भी शैतानी दा वेग चलदा होवे काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगले ते बंदे नू ओही कुछ ही प्यारा लगदा है। जद ओनू असी प्यार कर लेने आ ते फिर ओनू छड्डन दा ते सवाल नहीं पैदा हुंदा क्योंकि असी प्यार कर लिया है बुराई दे नाल। ते जद बुराई दे नाल प्यार बाणी गया है ते हुण फिर बुराई नू छड्डांगे क्यों। मन ओनू कदी वास्ते भी छड्डन वास्ते राजी नहीं हुंदा जिदे नाल ए प्यार दी गंढ पा लवे ते ओनू कदी अपना बनाउन वास्ते तैयार नहीं हुंदा जिनू मन प्यार ना करे मन परवान ना करे। निरंकार दे संबंध विच मंदरां मस्जिदां गुरुद्वारियां दे अंदर कथा कहानियां चलदियां ने मन निरंकार दे राह दे उत्ते नहीं तुरदा। क्यों नहीं तुरदा क्योंकि मन अजे गुरबाणी दे बचना दे नाल निरंकार दे नाल प्यार बनाया ही नहीं है। मन इस राह दे उत्ते तां नहीं तुरदा क्योंकि मन ने अजे तक मन्या नहीं है। मन दी प्यार वाली तंद प्यार वाली गंढ अजे बजी नहीं है। तो जिस दे नाल मन प्यार कर लैंदा है ओनू हर हालत दे अंदर अपना बनाउणा चाहुंदा है जिदे नाल प्यार ना करे ओनू छड्ड देंदा है। ए मन दा सुभाअ है ओनू छड्ड देंदा है। अगर परमात्मा दे नाल मन दी सांझ बनदी नजर नहीं आ रही कथा कीर्तन करन तो बाद या सुनन तो बाद ते ए कहना पएगा कि मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू है मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू सर्व व्यापक है तू सुख दा दाता है तू नेड़े तो नेड़े है। मन जे नहीं मन दा मन्या होएगा साडी जुबान ने सुनिया होएगा कन्ना ने मन ने नहीं मन्या। गुरबाणी दे अंदर एक वचन इस तरह भी आंदा है पातशाह कहिंदे ने पाप बुरा पापी को प्यारा है ता पाप बुरा पर पातशाह कहिंदे ने करिए कि पापी नू प्यारा बड़ा लगदा है। ते हुण पाप जिस पापी नू प्यारा लगदा है वो प्यारी चीज नू छड्डेगा कदों। प्यारी चीज नू ते उठ के मन हाथ पा के पकड़ लैंदा है छड्डदा नहीं। पाप बुरा पापी को प्यारा गलतियां प्यारियां लगदियां ने मुड़ मुड़ के बंदा ओही गलतियां दोहरा रहा है। इस तरह ते नहीं कि अज गलती कीती है कल नहीं करदा एक गलती नू हजारां बार दोहरा रहा है क्योंकि गलतियां प्यारियां लगदियां। गुरबाणी दे बचन प्यारे नहीं लगदे दोहराउण तों गुरेज कर जांदा ते जिन्हों प्यारे लगदे ने ओह मुड़ मुड़ के गुरबाणी दे बचनां नू भी दोहराउंदा। एक ही गुनाह साडे जीवन दे अंदर कई कई वार हो चुका है इहदा कारण की है असीं तौबा भी कर लैने आ दो हाथ जोड़ के खिमा भी मंग लैने आ एक वार मुआफी कल ए गुनाह नहीं करांगा पातशाह अज बख्शो कल ए भुल नहीं करांगा पर कल आउंदा है ते ओही भुल फेर हो जांदी। अज अखां नू वार वार रोकिया अखां ने बुरे पासे नहीं वेखना कल नू फेर वेख रही हन अगले दिन फेर वेखणगे। इस सिलसिला लगातार जारी रहिंदा है क्योंकि मन जिधर वेखदा है ओनू प्यार बड़ा करदा है ते जिन्नू प्यार करदा है ओनू मन वार वार सुनना भी चाहुंदा है मन वार वार बोलना भी चाहुंदा है मन वार वार वेखना भी चाहुंदा है जिन्हों प्यार करता ते जिन्हों प्यार नहीं करता।

कोई अधूरापन नहीं है। परमात्मा आप भी संपूर्ण है, तो आस किसकी रखिए? जो देंदा है ते दे के पछताउंदा नहीं है। भरोसा किसते रखिए? जो देंदा है ते दे के पछताउंदा नहीं है। बंदा बहुत वार बंदे नूं दे देंदा है ते दे के फिर पछताउंदा बड़ा है। जद बंदा इहदा एहसान ना जताए, इहनूं राम सलाम ना करे, मिठी बाणी इहदे नाल ना बोले, या इहदी वरतों कम विच किधरे ना आए, ते बंदा बड़ा पछताउंदा, इहनूं मैं क्यों दिता, इहदी मैं मदद क्यों कीती। परमात्मा पछताउंदा नहीं है। फिर बंदा दे के एहसान दी पंड सिर दे उत्ते रख दिंदा है और वह एहसान पुत्रां पोतरियां तक निभदा है। मैं तुहाडे पिता दी बांह फड़ी सी, मैं तुहाडे दादे दी बांह फड़ी सी, मैं मदद कीती सी। परमात्मा एहसान भी नहीं जताउंदा, देंदा है ते एहसान भी नहीं। फिर बंदे दा सुभा है ये देंदा है, देंदा है नाल व्याज मंगदा है, परमात्मा मूल भी नहीं मंगदा। परमात्मा नहीं मंगदा कि मैनू मूल चाहिदा है, तेरे कोलों ब्याज चाहिदा है, नहीं मंगदा। वह दे रहा है अपने सुभा दे मुताबक, देना उहदा सुभा है, चोली विच पाई जा रहा है। उसदे दित्तियां दातां दे इवज, दित्तियां दातां दे बदले आपां मुल चुकाउणा पावांगे की चुकावांगे? कोई अखां दा मुल है जो चुका पावांगे? जुबान दा मुल है जो चुका पावांगे? शरीर दी तंदुरुस्ती दा मुल है जो चुका पावांगे? पैसे दे नाल दवाइयां मिलनगियां पर खिमा चाहवांगा तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। तंदुरुस्ती परमात्मा दी देन है। अगर तंदुरुस्ती पैसे दे नाल मिलदी है ते कोई भी तनाड़ पुरश कदी रोगी ना बनदा। और वेख्या है जिवें जिवें धन वधदा है, आलस वधदा है, दलिद्र वधदा है, रोग वधदा है, सराणे गोलियां पईयां हुंदियां ने, गोलियां दे फक्के मार के सौना पैंदा है, गोलियां खांदियां उठना पैंदा है। अगर धन दे नाल तंदुरुस्ती मिल जांदी तो कोई भी धनी पुरश ना रोगी हुंदा ते ना सोगी हुंदा, कोई डिप्रैशन विच ना जांदा। ये परमात्मा दी दात है। तो मैं अर्ज कर रहा सां, परमात्मा अमोलक दातां दा, असीम दातां दा मालक है, देंदा है, ना एहसान जताउंदा है, ना व्याज मंगदा है। करना की है? उसदे इवज बस शुकराना ही ते करना है। धनवाद दे दो बोड़ी ते कहने ने कि परमात्मा तेरा शुकर है। वो धनवाद कहने वास्ते ये कथा कीर्तन मंदिर मस्जिद अदारे खड़े किए गए। तेनू रब दा धनवाद करन दी जाच आ जाए, रब दे उते आस टकाउन दी जाच आ जाए। दाता रब है, कोई दूसरा नहीं, तू रब नू दाता मन लवे। सारी कथा कीर्तन दा भाव यही है, होर की है। पर मनुख रब नू दाता नहीं मनदा, बंदे नू दाता मनदा है। अक्सर मैं सुनिया मेनू ते फलाने की कृपा दे नाले दात मिल गई, मेनू ते फलाने की कृपा दे नाले दात मिल गई। परमात्मा दा नाम पिछे रख देंदे ने, बंदे दा नाम पहला ले आंदे ने, बंदे नू दात पहला दे देंदे ने, रब नू दात देनी भुल जांदे ने। तो मैं गुरबाणी दा एक बचन तुहाडे सामने रखदा चला। हजूर कहिंदे ने हर जीओ तेरी दाती राजा। परमात्मा तू दाता देवे बंदा तां ही रजदा है। बंदे दे दित्तियां ते बंदा रजेगा नहीं। लोहे दे नाल मिलके लोहा ही रहा जा सकदा है, सोना ते नहीं बनिया जा सकदा। जो आप लोहा है वह तुहानू सोना बनाउणा भी चाहे किवें बनाए, लोहा लोहा ही बनाएगा। लोहे दे नाल मिलके लोहे वर्गे ही बनोगे। अख्या हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपरा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा। मोहताज मैंने गुलाम, मैं बंदे दी सिफत की करा ते बंदे दा गुलाम की बना। जद मैनू ए समझ आ गई कि तू देन वाला है ते फिर मैं गुलाम ही तेरा ही बनागा। समझ आ गई है कि सर्वगुण संपन्न तू है तो फिर मैं नमस्कार तेनू करा, बंदे नू क्यों करा। ठीक है, धनवाद है उस बंदे दा जो साड़ी रोजी दा जरिया बनया है, उदा भी धनवाद है। पर सारा धनवाद परमात्मा दा जिन्ने वो बहाना बना लिया है। ठीक है, जिस मोटर कार दे उते सवार हो के तुसी दूर जांदे हो, सफर नू तय करदे हो, उस मोटर कार नू भी तेल पानी चाहिदा है, साफ सफाई चाहिदी है, कार दी संभाल चाहिदी है। पर एक ख्याल करे, कार कार नहीं होंदी,
कार भावे $2,00,000 की खरीद लो, कार हमेशा बाहर ही खड़ी होगी, उन्हें अपने ड्राइंग रूम के अंदर अपने नाल लेके नहीं जा सकोगे। कार का काम है मंजिल तक पहुंचाना, कार है बहाना, बहाने की संभाल जरूरी है, बहाने का धन्नवाद है, पर जिसनू मिलन वास्ते जा रहे हो असली धन्नवाद ते उहदा है जो निरंकार है। बंदा बंदे नू दा देंदा है। तो खैर एक अदीब दा बोल मेरे सामने आउंदा है, वह कहिंदा है तारे मौला पे एक ही सिजदा काफी, वो भी दूर से। फिर बेनती करा, तारे मौला पे एक ही सिजदा काफी, वो भी दूर से। वह कहिंदा है दूरों रब दे दर ते कवारी सिजदा कर लो, ना कवारी अरदास कर दो, ओना ही बड़ा है, ओने नाल ही सुन लेंदा है। ठीक दूसरे पासे दारे इंसान पे 100 बार दस्तक देनी पड़ती है। दारे मौला पे एक ही सिजदा काफी, वो भी दूर से। दारे इंसान पे 100 बार दस्तक देनी पड़ती है। बंदे का दरवाजा 100 बार खड़काउणा पैंदा है तां वो मदद करन वास्ते राजी हुंदा है। परमात्मा का दरवाजा 1 बार खड़काया ही काफी है, 1 बार मंगना उतना ही काफी है। मंगना दोष नहीं है, बेनती करदा चला, मंगना गुनाह नहीं है। दुनियावी दाता मंगो या धार्मिक गुणा नू मंगो, अध्यात्मिक रस्ते दे गुण मंगो, दाता मंगो या दुनियावी पदार्था नू मंगो, मंगना कोई दोष नहीं है। पर एक ख्याल रखो कि मैं मंग किस पासों रहा, किदे कोलों मैं मंग कर रहा। अगर मंग बंदे कोलों मंगोगे ते पाशा कहिंदे ने जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराईए, फिर ते लाज आउणी चाहीदी है जे रब नूं छड्ड के बंदे कोलों मंग रहे हो। मंगो पर परमात्मा कोलों मंगो, भगतां ने मंगिया है और दिल खोल के मंगिया। मैं भगत धन्ना साहब जी दे बचन पढ़े, भगत जी कहिंदे ने गोपाल तेरा आरता, आरता दा मतलब हुंदा है सवाली, आरता दा मतलब हुंदा है दुखिया, आरते दा आरती वाले शब्द दे नाल दूर नेड़े दा भी वास्ता नहीं, कॉन्सेप्ट रलदा ही नहीं, सब्जेक्ट रलदा ही नहीं। दूरों नेड़ियों में घुमा के वेखोगे ना तां वी आरती वाले शब्द दे नाल आरते वाले दा गुणा तकसीम करके भी कोई संबंध नहीं बनदा। पर लफज इको जे ने, असी लफजां नूं वेख के आरती वाले शब्द दे नाल ही चुक के आरते वाला मिला दिता। जद आरती करदे ने विच ही आरते वाला शब्द पढ़ देंदे ने, तो जद के दूर का भी वास्ता नहीं। खरे मेरा विषय नहीं सी, बेनती विचकार आ गई। अर्ज मैं कर रहा सा, गोपाल तेरा आरता, हे धरती दे मालक परमात्मा, मैं तेरा सवाली, तेरे दर का मंगता बन के तेरे कोल आया। भगत धन्ना जी कह रहे ने, तेरा आरता, आरता मैंने सवाली, आरता मैंने दुखियार, मैं एक सवाली गोपाल जी तेरे दर ते आया, और मैं सुनिया है तेरे संबंध विच के जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। मैं सुनिया है कि जो तेरे राह ते चलदा है तो उन्हां दे सारे काज सवारने शुरू कर देना। मैं तेरे संबंध विच ये सुनिया है ते सुन के आया कि जो तेरे मार्ग वल नूं वधदे ने तो उन्हां दी बांह आप पकड़ लेना, मददगार तो आप बन जाना। मैं भी तेरे मार्ग दे उत्ते चलन दा यतन कर रहा। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, मैं तेरे मार्ग दे उत्ते चल रहा और तेरे ही दर ते आया सलाम लेके, तेरे दर ते आया अपनी मंग लेके। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। मैनू दाल भी चाहीदी है, मैनू सीधा भी चाहीदा है, आटा भी चाहीदा है, मेरे मन दी खुशी बनी रहे, मैं आराम पूर्वक तेरे रंग दे अंदर रंगिया रवा, मैनू दुनियावी दातां भी चाहीदियां ने। बल्कि कबीर साहब ते भी कहिंदे ने, भूखे भगत ना कीजे यह माला अपनी लीजे, अपनी माला फड़ मेरे तो नहीं यह पकड़ी जांदी। अगर पेट विच रोटी नहीं तो मैं बंदगी की करा, भोजन भी चाहीदा है। दुनियावी दातां दी मैनू लोड़ है, क्योंकि शरीर मेरा मायावी है, शरीर मेरा दुनियादारी दा हिस्सा है। तो जद मैं जन्म लेके मायावी जगत विच आया हां ते माया मेरी लोड़ है, कह लगे मैनू चाहीदी है। खैर मैं इस तो अगे चला,
दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। कहन लगे पनिया शादन नीका, नीका मैंने चंगा, पनिया मैंने पैर दे अंदर पाया जान वाला जोड़ा, पैरां दी जुत्ती उनु कह दिता पनिया, शादन मैंने कपड़ा। तन्ना जी कहिंदे ने पनिया पैर दी जुत्ती चाहिए और कपड़ा चाहिए, पर ऐ परमात्मा कन्न देख के मेरी अरदास नु सुन, मैनु नीका चाहिए, नीका मैंने चंगा, एनी के फटी प्राणी जुत्ती मेरे मथे मारे ते फटिया प्राणा कपड़ा दमे नहीं चलेगा। कहन लगे पनिया शादन, पनिया मैंने जुत्ती, शादन मैंने कपड़ा, पनिया शादन नीका, दोवे चीजा मेरी लोड़ ने, मेरा लोभ नहीं है, मेरी लोड़ है, ते मैं अपनी लोड़ नु मुख रख के तेरे कोलो मंग रहा, पर ख्याल करी देन वालिया मैनु नीका चाहिए, चंगा चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए। क्यों नीका चाहिए? मैं तेरा भगत हां, मैं मुफलसी दे अंदर नहीं रहना चाहता, मैं राजा जोगी हां। फिर अगा कहिंदे ने अनाज मंगो सत सीका, तो वड़े विचों जेड़े जिमीदार तंदे दे नाल संबंध रखदे ने वो मेरी बेनती नूं ज्यादा पकड़ कर सकणगे। जद खेत दे अंदर एक वार हल चलाया जाए ना, ते उन्हों कह देंदे ने जिमीदार पाशा दे अंदर एक सी लाई गई, खेत एक वार वाया एक सी लाई गई। हुण जितनी ज्यादी वार खेत नूं वाहोगे ते वाहुण तों बाद बीज बीजोगे उन्नी चंगी फसल होएगी, मिट्टी बारीक बन जाएगी, फसल नूं उगण दे अंदर मदद करेगी। भगत जी जिमीदार ने कहन लगे अनाज मंगो सत सीका, सत वार खेत नूं वाया होवे, चंगी तरह फसल पैदा कीता होवे, दाना मैनू ओ चाहिदा है, अनाज मैनू उस तरह दा चाहिदा है, मरे दाने वाला अनाज नहीं चाहिदा, कि चलो जिहड़ी रही कोई कणक है, सुकी सड़ी कणक है, ओ तन्ने दे मत्थे मारा नहीं चाहिदी। अनाज मंगो सत सीका, अनाज चाहिदा है ते चंगा चाहिदा है। फिर अगा कहिंदे ने गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक गऊ भी चाहिदी है ते मझ भी चाहिदी है, पर परमात्मा ख्याल करें केवल मैं उस गऊ ते मझ नूं पट्ठे पाउण जोगा ही ना रवां, चारा खवाउण जोगा ही ना रवां। लवेरी ते ठेठ पंजाबी दे अंदर लवेरी, मैं लवेरी गऊ किन्नू कहिंदे ने जिहड़ी दुध देण वाली होवे, जिहड़ी दुध देना बंद कर जे उहनूं कह देंदे ने तोकड़। मैनू तोकड़ गऊ नहीं चाहिए, मैनू तोकड़ मझ भी नहीं चाहिए, पट्ठे मैं पाउंदा रवां, दुध कोई होर पीवे यह सौदा मैनू पसंद ही नहीं है। कहन लगे गऊ भैंस मंगो लावेरी, लवेरी चाहिए, दुध देन वाली चाहिए। यह कुछ मंग के अगे एक होर मंग रख दिती, कहन लगे एक ताजन तुरी चंगेरी, गुरबाणी दे वचन ने भगत तन्ना साहब जी दे। कहन लगे एक मैनू घोड़ी भी चाहिए, तुरी मैंने घोड़ी, ते परमात्मा घोड़ी ओ नहीं जेड़ी लंगड़ा के चलदी होवे, कमजोर होवे, किधरे छाल मार के टपना पाए, टपना पाए, पानी विचो तैरना पाए, तैरना पाए, दौड़ना पाए, उस तरह दी नहीं, चंगेरी चंगी चाहिए। मैनू गऊ चाहिए, मैनू मझ चाहिए, चंगी चाहिए, मैनू घोड़ी चाहिए, चंगी चाहिए। चलो समा घोड़िया घोड़िया दा सी, मंग घोड़ी दी कर ली, सफर करन वास्ते सवारी ले, समा कार दा है, मंग कार दी कर लो। अनाज दाल आटा दुध घ्यो मखणे ते सब दी मंग है ना, सब नू चाहिदा है। मेरा मतलब है दुनियावी दाता साडी लोड़ ने, सानू चाहिदियां ने, मंगना कोई गुनाह नहीं। पर एक ख्याल करो, जद भी कुछ मंगो उहदे नाल परमात्मा नू जरूर मंगो, परमात्मा घर ते मेरी लोड़ है, घर मैनू चाहिदा है। इस तरह नहीं कि घर मेरा लोभ है, घर मेरी लोड़ है, घर मैनू चाहिदा है, पर घर मैनू इस तरह दा दई उस घर दे अंदर रह के मैं अपने अंदरले घर विचो तैनू बार ना कढ दिया। इह ना होवे कि मैं बाहरों सीस महल विच प्रवेश कर जावां ते अपने मन दे घर विचो तैनू बार कर दिया, तेरी याद ही ना रवे। जिहे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर, तैनू मैं अंदर त्यौंदा रवां, याद करदा रवां, घर चाहिदा है। कपड़ा भोजन चाहिदा है, पर नाल लगदा तू ही चाहिदा है, तेरी याद भी चाहिदी है। मैनू गऊ मझ ते घोड़ी चाहिदी है,
परमात्मा तू ही चाहिदा है, तेरी याद की माला मेरे अंदरों टूटे ना, मन दे हाथ विचों तेरे याद की माला खिसके ना, तेरी याद अंदर चलती रहे, लगातार चलती रहे। गऊ भैंस मंगण ला वेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी, ए सब कुछ मंगन तो बाद, हुण घर दा साजो समान ते सारा ही मंग लिया, आटा मंग लिया है, दाल मंग ली है, घ्यो मंग लिया है, मझ मंग ली है, गऊ मंग ली है, घोड़ी मंग ली है। तो हुण अक्सर कहिंदे ने कि घर नूं संभालण वास्ते औरत भी चाहीदी है, और पंजाबी ठेठ भाषा दे अंदर कह देंदे ने कि औरत सूई दे नाल घर बना लैंदी है। घर दी संभाल दे अंदर, घर दे बनाउन दे अंदर औरत दा बहुत वड्डा हाथ है, छोटा हाथ नहीं है, बहुत वड्डा हाथ है। गृहस्थी मार्ग दा बराबर दा हिस्सा है औरत। भगत धन्ना जी ने रब कोलों औरत भी मंग ली। कहन लगे घर की गीहन, गीहन मैंने घर वाली, घर की गीहन चंगी, ते कहन लगे रब जी चाहीदी भी चंगी है। इत्थे एक ख्याल करियो, चंगी ते सुंदर इन्हां दोहां लफ्ज़ां दे अंदर जरा को फर्क है। साडी मंग हुंदी है सुंदरता दी, भगत धन्ना जी सुंदरता दी मंग नहीं कर रहे, भगत धन्ना जी चंगी दी मंग कर रहे। चंगी दा मतलब जिहदे लक्षण चंगे ने, सुभा चंगा है, मानसिक मंडल चंगा है, विचार चंगे ने, जिहनों जिगर चंगा है। कहन लगे ठीक है, परमात्मा घरवाली चाहीदी है, जीवन दा साथी चाहीदा है, पर चंगे लक्षणा वाला चाहीदा है, चंगे सुभा वाला चाहीदा है। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगे, ए सब दाता मैं तन्ना तेरे कोलों लैनिया चाहना, मंग के लैनिया चाहना, मंग कर रहे ने। रब कोलों मंगना गुनाह नहीं है, रब जी दे कोलों मंगना दोष नहीं है, पर एक ख्याल करो, जदों भी मंग मंगो उदों परमात्मा नूं जरूर मंगो। हुण एक बेनती कह के मैं इस तों बाद सलोक दे अखरीर तुहाडे सामने रखा। आप सवेरे भी गुरुद्वारे आउंदे हो, दोपहरे आओ, शामी आओ, कल आओ, परसों आओ, जिस वक्त आउंदे हो, अरदास दी नवी लिस्ट बना के असी अपने मन विच लैके आउने आ। नवियां नवियां सूचियां, नवियां लिस्टां मन तैयार करदा है, और वह लिस्ट लैके असी गुरुद्वारे आउने आ। अज ए अरदास करनी है, अज ए अरदास करनी है, करदे वी। ते मैं वार वार कह रहा, करना दोष नहीं है, करना गुनाह नहीं है, पर उस लिस्ट दे अंदर ए वेखो कि सारा कुछ लिस्ट दे अंदर संसार ही मंग रहे हैं, जां किधरे निरंकार भी मंगे है। लिस्ट दे अंदर पदार्थ ही मंग रहे हैं, या परमात्मा भी मंगे है। साडियां सारियां लिस्टां पदार्थ दियां हुंदियां ने, परमात्मा उहदे विच शामिल नहीं हुंदा। साडी सारी लिस्ट दे अंदर, मन दी बनी सूची दे अंदर संसार हुंदा है, निरंकार नहीं हुंदा। संसारी जीव हां, संसार साडी लोड़ है, मंगना दोष नहीं, पर धर्म भी ते साडी लोड़ है, निरंकार भी ते साडी लोड़ है। निरंकार नूं क्यों नहीं मंगदे? परमात्मा धन भी चाहीदा है, पर धर्म भी चाहीदा है, परिवार भी चाहीदा है, पर निरंकार भी चाहीदा है, पदार्थ भी चाहीदा है, परमात्मा भी चाहीदा है। तेरे तों बगैर भी गुजारा नहीं, पदार्थ तों बगैर भी गुजारा नहीं। शरीर चलेगा मेरा आम दुनियावी चीजां दे नाल, मन मेरा संवरेगा चलेगा तेरी रहमत ते तेरे गुणा दे नाल। तो अज दे सलोक दे अंदर भगत जी कहिंदे ने, फरीदा राती वड्डियां, सियाले दी बहार दियां रातां बड़ियां वड्डियां ने, दिन छोटे ने। उस रात दे अंदर तुख तुख उठन पास, लम्मे प्यां प्यां पासे दुखने शुरू हो गए। तुख तुख दा मतलब दुखने शुरू हो गए, ते की पास, पासे दुखने शुरू होए। कहन लगे जिवें रात सियाले दी रात मुक्कण विच नहीं आउंदी, उन्हां मनुखां दा जीवन भी इस तरह ही भारा हो जांदा है, दुब्बर हो जांदा है, दुखदाई हो जांदा है, जो एक रब दी आस ला के ते बंदे नूं अपना सहारा मन के बह जांदे ने। त्रिक तिन्हां दा जीविया जिन्हां विड़ानी आस, जिन्हां ने बंदे नूं आस बनाया, भरोसा बनाया, जिदी आस बनाउनी सी उन्हों छड़ देता। मैं हैरान हुन्ना कि यां ते सानू बाणी दी समझ नहीं है, ते यां असी जान बुझ के बाणी नू मनदे नहीं हां। जद एलानिया गुरु अर्जन देव साहब जी सुखमनी साहब विच कह रहे ने कि मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, ते असी दाता फिर बंदे नू क्यों बना के रख देने, बंदा दाता है।
ठीक है वह सारिया छपड़िया मुबारक ने जिन्हों के अंदर पानी खलोता मिलता है, वह सारे तालाब मुबारक ने, नदियां मुबारक ने, दरिया पले ने, झीलां सरोवर तालाब चंगे ने जिन्हां विच पानी है। पर पानी आया कित्थों आया? ते सारा पानी सागर कोलों है ना। सागर ही पानी दा मरकज है, सागर ही पानी दा केंद्र है। वह पानी भावें नदियां विच वग रहा है तां सागर दा है, भावें तालाबां टोबियां दे अंदर नजर आ रहा है तां सागर दा है, भावें आम छपड़ियां विच नजर आ रहा है तां सागर दा है। तुहानू सतगुरु सागर दे नाल जोड़ रहे ने, छपड़ियां तालाबां दे नाल ने, पर असी छपड़ियां दे नाल जुड़ने आ, सागर वल जांदे नहीं आ। सागर तो डर लगता है, सागर का भरोसा बनाउंदे नहीं आ। किसी छपड़ी दे अंदर दो घुट्टां पानी है, उत्थे सब कुछ अपनी मंजिल मन के उन्हों नमस्कार करनी शुरू कर देने आ। जिथों पानी उन्हों मिलिया उहदे नाल तुसीं अपनी सांझ क्यों नहीं बना रहे? गुरु नानक साहब जी ने सानू निरंकार दे नाल जोड़िया बंदे दे नाल नहीं, पर साडा भरोसा साडा विश्वास जिन्हां बंदे दे उत्ते है उन्हां निरंकार दे उत्ते टिकदा ही नहीं है। तो कहन लगे तिग तिन्हां दा जीविया जिन्हां विड़ा नहीं आस, जिन्हां दी आस बंदे दे उत्ते है उन्हां दा जीवन कोई चंगा जीवन नहीं है। तो हुण मैं बोल नहीं सी बोल सकदा अगर गुरबाणी दे बचन ना हुंदे। भगत जी कहन लगे तिग, ते तिग दा मतलब है त्रिगकार, त्रिगकार दा मतलब हुंदा है लानत है, फिटकार है उस जीवन दे जो जीवन देन वाले दी आस छड़ के ते बंदे नू आस बना के बह जांदे ने। कहन लगे उहदा जीवन त्रिगकार है, लानत दे योग है। इस तो अगला श्लोक, फरीदा जी मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, जो मेरे पास है मैं अपने मित्रां तों लुका के उन्हों किवें रखां जो मेरे पास है? ते फिर खास करके गुरु मित्र तों किवें लुका के रखां? देन वाला भी ते गुरु मित्र है। जो मेरे पास है वह लुकाया नहीं जा सकता। तन गुरु देन वाला है, गुण निरंकारी बख्शन वाला है। कोई कला है तां निरंकार दी, सोहपन है तां निरंकार दा। जितना भी तेरी चोली दे अंदर साजो समान दाता नियामता नजर आ रही ने, दे के नवाजन वाला कौन है? निरंकार। तो निरंकार मित्र तो फिर मैं परता रखा भी किरा। आखिया जे कोई मेरी दिली सांझ रखन वाले रब्बी पेंडे चलन वाले होर मित्र होन, उन्हों कोलों भी मैं अपना आपा छुपावांगा ने, सामने उन्हां दे रख देंगा अपने आप नू खुली किताब की तरह। हेड़ा जले मजीठ ज्यो उपर अंगारा, जे मैं अपने रब्बी पेंडे पैन वालिया मित्रां तों कुछ छुपा के रखदा। ते फरीद साहब कहन लगे मेरा मास सड़दा है। हेड़ा हेड़ा मैंने मास, बाबा फरीद साहब जी दे सलोक आ बड़े ध्यान नाल पढ़दे सुनदे हो, इहदे अखरी अर्थ याद करी जाना। हेड़ा हेड़े दा मैना मास, आख्या मेरे शरीर दा मास सड़दा है, मतलब मैं कुरजदा, मैं दुखी हुंना, मैं कलपना। अंगार दे उत्ते प्या होया मेरा मास चुलसदा है, पुजदा सड़दा है। जे मैं रब्बी राह ते चलन वालिया मित्रां तों अपना अंदर छपा के रखदा, कुछ भी पर्दा नहीं है, खास करके उन्हां तों जिहड़े रब जी दे राह दे उत्ते चलन वाले ने। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़िया, पर मित्र ठग ना होन, मित्र सही होन। मित्र ओ ना होन के जुबानों कहिंदे होन तूं ते मैं भाई भाई, ते पता उदों ही लगे जदों भाई भाई दी जेब कट के भाई भाई दा घर खाली करके चला जाए। मित्र चोर ना होवे, मित्र अयाश ना होवे, मित्र बदमाश ना होवे, मित्र दी अख दे अंदर मैल ना होवे, मित्र इस करके ना बनिया होवे। खुले जे बोल मैं तुहाडे सामने अर्ज करना चाहुंना, खिमा चाहवांगा, किसे धी भैण दे उत्ते अख रखण वाला मित्र ना होवे। किसे दे घर जाए ते अगले दी घर दे इज्जत दे उत्ते अख टका लवे, कादा मित्र है? इहदे नालों वड्डा दुश्मन ही कोई नहीं। इह ते बुकल दा दुश्मन है, नेड़े दा दुश्मन है। जिहड़ा दुश्मन है शरेआम खड़ा है, उहदे तो बचा कर लोगे, पता है इह दुश्मन है। पर जिहड़ा भाई दी पोशाक पा के चल रहा है, मित्र दी पोशाक पा के चल रहा है, अंदरों दुश्मनी कर रहा है, इस तरह के दुश्मनों कोलों अपना आपा बचा के रखना बड़ा जरूरी है, ते बचा हुंदा भी बड़ा मुश्किल है।
क्यों मुश्किल होंगे क्योंकि वह कहते ने तू तो मैं भाई भाई धर्म के भराव हाँ अंदरों निगाह खोटी होंगी अंदरों दाती दे नाल जड़ा वड्डन दी करदे ने तो खैर रब्बी पेंडे पैन वाले रब दे प्यारे मित्र ते सतगुरु मित्र तो मैं अपना आपा किवें छपावां अगर मैं छपाउना ते फिर मेरा मास इस तरह ही सड़दा है जिवें अंगार दे उत्ते पई कोई कोई चीज सड़दी है। एक श्लोक दे अखरी अर्थ मैं होर तुहाडे सामने रखदा चला। कहन लगे फरीदा लोड़े दाख बिजूरिया। पंजाब दे अंदर एक इलाका रह गया बिजौर दा इलाका। तुहाडे विचों बजुर्गवार शायद मेरी बेनती नूं समझ पाउण बिजौर दा इलाका। बिजौर दे अंदर ज्यादातर पठान लोग रहिंदे ने और बिजौर दे इलाके दे अंदर दाखां छोटियां हुंदियां ने अंगूर हुंदे ने छोटे हुंदे ने पर मिठे बड़े हुंदे ने। बिजौर दे अंगूर मशहूर बड़े ने। फरीद जी कहन लगे फरीदा लोड़ा लोड़ा दा मतलब तेरी लोचा है तेरी मंग है ते मंग की है दाख बिजूरिया बिजौर दे छोटे छोटे अंगूर दाखा खान लई मिलन पर कर की रहा है किकर बीजे जट खेतां दे अंदर की बीज रहे हैं किकरां दे बीज। तो हुण बीज किकर दा है ते किकर दे बीज तो जिहड़ा बूटा बनना है वह किकर दा ही बनना है ना। उस बूटे नू जेड़े फुल लगने ने किकर दे लगने ने उस बूटे नू जेड़ा फल लगना है वह कंडिया वाला लगना है तो कंडे चुभने भी तेरे पैर विच ने किसी दूसरे दे पैर विच नहीं। ख्याल करियो जो कर्म असी कर रहे हैं वह साड़ी ही झोली विच आउणे ने फल बन के दुख का रूप या सुख का रूप बन के। गार्डन बाग दे अंदर बूटे ते लाए सन दादे ने पर उन्हां दा फल खांदे रहे पिता। बाग लाया सी पिता ने बूटे लाए ने पिता ने फल खांदे रहे पुत्र पोतरे दोतरे अगे बीज दा कोई ये फल कोई दूसरा खा सकदा है बाहरी दुनिया दे अंदर। अध्यात्मिक जगत दे अंदर धर्म दी दुनिया दे अंदर जो तुसी बीजिया है वो तुहानू ही वढ़ना पैना है ते तुहानू ही खाना पैना है। इस तरह नहीं है बीजोगे तुसी ते फल तुहाडे पुत्रां नू मिलेगा तुहानू ही मिलेगा। एक गल वखरी है कि जद बंदा बीज बीजदा है सोच के नहीं बीजदा अखां बंद करके बीजदा है। जदों भी ये कर्म करदा है ना नेत्र बंद करके करदा है। देखी जाएगी दुनिया सारी इस राह ते चल रही है इस तरह दी बीज बीज रही है ते मैं उल्टे राह ते क्यों चला दूसरे राह ते क्यों चला। ये दुनिया दी चल दी रीत नूं वेख के कर्म करदा है गलत कर्म करदा है अखां बंद करके तो सारी दुनिया दे अंदर डिप्रेशन भी ते समाया होया आप वेख ही रहे हो ना दुख दा फल खांदिया भी ते सारियां नूं वेख ही रहे हो ना। घर सीस महल वर्गे ने पर दुखां दा धुआं घरां दीआं चिमनियां विचों उठदा नजर आ रहा। लग्जरी कारां चार चार घरां दे अंदर खलोतियां ने डिप्रेशन दे मरीज नजर आ रहे ने। धन दी कमी नहीं घर दी कमी नहीं ज्ञान दी कमी नहीं ते खिमा करियो दुख दी भी कमी नहीं कोई दुख मिटिया नहीं है ना इत्थे आण के मिटिया है ना इंडिया विच मिटिया सी। इत्थों अगे चले जाओ अमेरिका चले जाओ मिटना उत्थे भी नहीं है इत्थों पिछे चले जाओ इंग्लैंड चले जाओ मिटना उत्थे भी नहीं है। ये जद भी मिटदा है मानसिक मंडल नूं बदलन तो बाद मिटदा है। शुभ कर्म करो ताकि दुख दा फल झोली विच ना आवे। भगत जी कहन लगे बीज दा है किकरां दे बीज ते किकरां दे बीज बीज के मंग करदा मैनूं दाखा मिल जाण किवें मिलण। कोई किकर दा बीज बीज के लंगर चला दवे अखंड पाठ करवा दवे अरदास करवा लवे कि इन्हां मेरियां किकरां नूं अंगूर लग जाण। दुनिया दा दस्तूर ए नहीं ते रब दा दस्तूर भी ए नहीं ना साडा दस्तूर है ते ना परमात्मा दा दस्तूर है। जो कर्म कर रहे हो तुहानूं भुगतने पैणगे खाने पैणगे। बड़ा संकोच करके सोच समझ के कर्म करो ताकि फल खांदिया पछताउणा ना पवे। किकर बीजे जट हंड उन्न कताएंदा पैंदा लोड़े पट। चाहुंदा यह है कि पट दे कपड़े पावा पट मैंने रेशम रेशम दे कपड़े पावा पर उन्न लेके फिर रहे हैं उन्न कतदा फिर रहे हैं उन्न बीजदा है उन्न हंडा रहे हैं उन्न तेरे कोल है। चाहुंदा यह है कि मैं रेशम बना लवा उन्न दी किवें बने। तो जो कर्म करना है ध्यान दे के करो परमात्मा दे उत्ते आस रख के करो। परमात्मा तो आस नूं थिड़कण ना दिओ। बंदे दी आस रखोगे अधूरे रहोगे
बंदे दी आस रखोगे दुखे ही रहोगे। परमात्मा दी आस रखोगे परमात्मा दुखा नूं मिटा देंदा है, बंदा दुख नूं मिटाउण दी समर्था रखदा ही नहीं है। फिर परमात्मा कोई एहसान नहीं विखाउंदा, बंदा एहसान विखाउंदा है। कर्म करो अखां खोल के पर परमात्मा दे उत्ते टेक ते भरोसा रख। भगत फरीद साहब जी दे नाल तीन श्लोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाना यतन कीता गया। सतगुरु जी रहम करन सब दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अज्ञानता दा हनेरा दूर करन, तमाम होईयां भुल्लां लई दास खिमां दा जाचक है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फरीदा गलिये चिकड़ दूर घर, नाल प्यारे ने हों।

मिठियां रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस भरम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नू जितनी खबर बार दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बार दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्ते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बार मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बारों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओ वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्हां ने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओह इह है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे प्रिय पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है, ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उते या फिर तन दे उते पए होए कपड़िया दे उते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोता पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना वह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है पावे दोवें गुना दोवें दोष दोवें तरह दी मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखदा है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखदा है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आन के जेड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उदा नाम अपराध है। अपराध नू डर हुंदा है हाथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नू ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तक किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ, मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा ही चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। यह जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैर यह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवें आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवें आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवें आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कटदे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कह रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुनदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करै दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना। सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं ओदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी ओदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते केंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करा, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, इह पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो एदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रिहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अज्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना। लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अज थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संघ एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनू कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनू आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनू आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने उस तो पहला ने। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असी कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गलवकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चलां। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे, ते मां दीआं अखां वेख लैन कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके, ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहलां नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आउंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उते दाग, ते मन दे उते दाग कादे लगदे ने? मैलियां कर्मां दे। मन दे उते दाग कादे लगदे ने? मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरकह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरकह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए जगह नहीं मिलेगी। उत्थे आउणा है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनूं वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। ए जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर लै, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चलां। साढ़े तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण। शरीर विचों निकलन वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असीं ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैन दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर यह दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नूं साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े धोन वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ तो ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उतों मन धोवा के वापस ले आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ तो ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी तां, ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला किया है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणा विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के वो तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के बर्दाश्त नहीं होएगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन दे घर दे अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन ते नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना दे अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, ते परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है। अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे बोल, काम दे बोल, बुराई दे परे बोल पा रहा है, ते गुरेज करो, परहेज करो, उन्हों कहो भी अपना कूड़ा करकट, अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्ना दे राही मेरे मन दे घर विच सुटन दा यतन क्यों कर रहा है। कूड़ा दूजे दा हुंदा है, सानू मन दी समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की, असी हां विच हां मिलाने, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने दूसरे की चुगली सुन के, दूसरे की निंदा सुन के। पर ये नहीं जानते कि जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है, इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना।
प्यारियो इन्हां नुक्तियां नूं अपने जीवन दे अंदर अपनाओ अगर जीवन नूं रोशन करना चाहुंदे हो। गुरबाणी दा फरमान है, मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन हच्छा ना होए। कहन लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नूं धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते, कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करेत है, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है। कपड़े बुन रहे ने खड्डी दे उत्ते बह के। निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया, बाहरी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उसे समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उत्थे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज भरे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर ये बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग, कोय हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकलिया कोलो तनज भरे बोलां दे अंदर गल कह दिती, कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुच्चा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमे झूठे जाहे भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहन लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओह भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल भरे, जा रहे ने झूठ दे नाल भरे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बह सो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा ए दसदा ते जाके ओ जगह केड़ी है। मन नूं पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नूं पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दिओ, सारा जोर मन दे उत्ते दिओ। मन दी सफाई वल ध्यान दिओ ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नूं जन्म देंदे ने, उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। उह कहिंदे ने एक मनुख व्याहिया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणां नूं वेख के, सुहप्पन नूं वेख के, नक्शो निगार नूं वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखी मैनूं लगदा तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते, उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नूं वेख के। ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों वी नफरत है। दूजे तो नफरत कर दे, जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ बड़ा बुरा मनुख है। भी की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं, उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है, इहदी सोच बुरी, इहदा वेखना बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाना बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे दी बुराई तो नफरत है,
ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਲ ਮੂਦ ਕਸੂਤ ਸਬੈ ਪੁਨ ਔਰ ਸਲੇਖਣ ਬਾਂਜਨ ਭਾਰੀ, ਨਾਕ ਕੀ ਮੈਲ ਜਬੈ ਨਿਕਸੈ ਕਰ ਨਾਹੇ ਸੰਭਾਰ ਸੋ ਪੋਚ ਉਤਾਰੀ। ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਰਮੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਕਰ ਨਾਹੇ ਸੰਭਾਰ ਸੋ ਪੋਚ ਉਤਾਰੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੰਦਰ ਕਹੇ ਜੇ ਕੋ ਤਬ ਨਾਹੇ ਨਿਹਾਰ ਸਕੈ ਵੋ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਿੱਖ ਰੰਚਕ ਭਿੱਖ ਮੈਨੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੰਚਕ ਮੈਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਭਿੱਖ ਰੰਚਕ ਮੈਲ ਗਿਲਾਨ ਕਰੇ ਸੱਠ ਮੈਨੇ ਮੂਰਖ, ਸੱਠ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਗੜੀ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਿਰ ਭੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੋਲਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਮਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਮੈਲ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ, ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ। ਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਰਸਤਾ ਵਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ?

रब ना पूजन तुद हरिदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख।

रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विच तीन सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुद। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठिया चीजा नू लै रहे ने। नंबर एक दे उते शक्कर, नंबर दो दे उते खंड, नंबर तीन दे उते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नूं। मैं अर्ज कीती सी कि सब तो पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू होई। इन्हों ताई मिसरी कहा जाता है क्योंकि मिश्र दे अंदर ये सब तो पहला बननी शुरू होई कुजे दी मिसरी। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो। माखियो का मतलब शहद, मांझा मझां का दुध। कहन लगे सारियां वस्तुआं मिठियां ने पर जे रबी रस दे मुकाबले दे उते इन्हां विचों कोई भी उदाहरण बनाईए ते ओ रब जी दी तोहीन होएगी। जे ए कहिए कि रब जी दे नाल जुड़न तो बाद जेड़ा रस मिलदा है मिठास मिलदी है ओ शक्कर वर्गी है तां रबी गुणा दी रब जी दे नाम दी तोहीन है। जे कहिए ओ खंड ते मिश्री वर्गी है ते तां वी खंड ते मिश्री दी मिठास परमात्मा दी मिठास नालों बहुत थले है परमात्मा दी तोहीन होएगी। अगा कहन लगे ना ओदी मिठास दे बराबर माखियो ना मझ दा दुध कुछ भी ओदी उदाहरण नहीं है। ओ अपनी उदाहरण केवल आप है। अगर दुनिया दे अंदर आप कोई नूर हीरे दी उदाहरण लियानी चाहो ऐस जगत दुनिया दे अंदर जिथे आपां वस रहे हां ते कोई नूर हीरे दी एग्जाम्पल दुनिया विच दूसरी नहीं। ओदे वर्गा हीरा ही दूजा नहीं ते ओदे उदाहरण कौन कोई बने। कोई नूर अपनी उदाहरण आप है। इस तो अगे होर चलो चंदन दा रुख दुनिया दे अंदर केवल एक ही जगह दे उत्ते पैदा हुंदा है हिंदुस्तान दे अंदर करना।

नहीं सकिया पर जो रस भी नहीं बनिया ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध का जन्म होया तुहाडे विचों जिहड़े कुछ प्रेमी रोज अमृत वेले जागण वाले ने नित नेम करन वाले ने या कुछ सज्जन अभ्यासी ने उन्हां नूं मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। किसी मजबूरी दे कारण किसी दिन अमृत वेले ना जाग सकन या किसी मजबूरी दे कारण कम कार दे कारण या शरीर ठीक ना होवे इस कारण उह नित नेम ना कर सकन या कोई थोड़ा समा बह के परमात्मा दे नाल सुरत नूं ना जोड़ सकन सारा दिन उन्हां दा इस तरह बीतदा है जिवें कोई बड़ी कीमती चीज जेब दे अंदरों निकल के ते गुम हो गई है। सारा दिन उन्हां दा चिड़चिड़ेपन दे अंदर क्रोध दे अंदर रहिंदा है। सारा दिन बेचैनी विच बीतदा है। क्यों? क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी ओ रस अज नहीं मिलिया। रोज अमृत वेले जागदा सी अज जागिया नहीं गया। रोज नित नेम दीयां बाणियां दा जाप करदा सी अज कीता नहीं गया। रोज सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न दा तहैया करदा सी अज नहीं जोड़ सकिया। तो जो रोज रोज खुराक खाण दी मन नूं आदत पै जाए ओ किसे दिन खुराक ना मिले ते मन फिर रोएगा मन कलपेगा कि अज ओह खुराक दित्ती क्यों नहीं। अज ओह भोजन जो रोज रोज मिलदा सी अज ओह भोजन कित्थे गया क्यों नहीं मिलिया। मन इस तरह बेचैन हो जांदा है। और इस मेरी बेनती दी समझ सारियां नूं ते नहीं पएगी। आप जितने हो उन्हां नूं समझ पएगी जिन्हां ने रोज रोज मन नूं नाम दा रस देण दा आदि बना लिया है। जिन्हां ने रोज रोज मन नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के रस देण दी आदत पा ली है उन्हां नूं मेरी बेनती दी समझ ज्यादा आएगी। वैसे भी जीवन जिहड़ा साडा चलदा है उह चलदा ही रस दा बजा होया है। इह जिहड़ा शब्द है शब्द दे अंदर रस दा ही जिक्र है कि अज कंत मिलिया नहीं ते रस नहीं मिलिया ते मेरे अंग टुट रहे ने मन मेरा बेचैन है मन विच चिड़चिड़ापन है ते मैं उन्हां दुहागणा नूं पुछदा जिन्हां ने कदी कंत दे नाल बहिण दी जात सिखी नहीं कंत दे मलाप दा रस पाया ही नहीं कि तुहाडी जीवन रूपी रात किस तरह बीतदी तुम क्यों रहण बिहाए रहण मैंने रात ते गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो जीवन सारा ही एक रात है। हजूर दा फरमान एक रैन के पाहुण तुम आए पाहुण मैंने परौणे कहन लगे एक रात दा परौणा बन के आया है बहुजुग आस बंदाए ते लम्मियां जुगां जुगांतरां दियां आसां ला के बह गया है आया है केवल एक रात वास्ते एक रैन के पाहुण तुम आए। तो अर्ज मैं कर रहा सा साडा जीवन चलदा है रस दे आसरे और वो रस सानू मिलदा है मां कोलों रस मिलदा है पिता दे पासों रस मिल जांदा है अगे चल के पत्नी कोलों पति कोलों धीआं कोलों पुत्रां कोलों कुछ रस सानू कपड़े कोलों कुछ रस सानू भोजन पासों ते कुछ रस सानू बाकी दे समूह पदार्थां कोलों पदार्थां कोलों परिवार कोलों मनुखी जीवन दे अंदर रस बनदा है ते रोज बनदा है। हुण जिस मनुख दे जीवन दे अंदर मां भी ना रहे पिता भी ना रहे पत्नी भी ना रहे पति भी ना रहे धीआं पुत्र भी किनारा कर जन ते पदार्थां वल्लों भी बिल्कुल नगण हो जाए मुफलस हो जाए अति गरीब बन जाए पदार्थ भी ना रहे तन दौलत भी ना रहे शरीर दी तंदुरुस्ती भी ना रहे इस तरह दे मनुख दा जीवन बेरसा हुंदा है बेरसा क्योंकि जीवन चलना है किसे रस दे आसरे ते रस मिलदा है सानू काम क्रोध लोह मोह हंकार विचों रस मिलदा है सानू परिवार विचों रस मिलदा है पदार्थ विचों हुण परिवार भी किनारा करके चला गया पदार्थ भी कोल नहीं रहे ते शरीर दी तंदुरुस्ती भी नहीं रही तो कहना पएगा ना जीवन बेरसा है। इस तरह दा मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह दा मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम।

कि साडा घर मुर्द घाट ना बने, साडा घर शमशान भूमि दे बराबर ना बने, तो परमात्मा भी चाहुंदा है मेरा घर मुर्द घाट ना बने। असीं जिउंदे शरीरां नूं तरजीह देने आ, परमात्मा जिउंदियां आत्मावां नूं तरजीह देंदा है, जिउंदियां रूहां नूं तरजीह देंदा है। असीं अक्सर एक बोल देने आ ना कि फलाणे दी जमीर मर गई है, मरी जमीर वाले नूं परमात्मा अपने घर दे अंदर पना क्यों देवे, उन्हें अपने घर नूं कोई शमशान घर बनाउणा है। जे तुसीं राजी नहीं कि अपने घर नूं शमशान घर ना बनाईए, तो परमात्मा भी राजी नहीं, वह कहिंदा मैं भी शमशान घर नहीं बनाउणा, मेरे कोल भी आ ते पूरा पवित्र होके आ, पूरा अपनी जमीर नूं जिंदा रख के आ, अगर मेरे कोल आउणा है। तो जो आत्मा मुर्दी हुंदी है, आत्मिक तौर ते जो मरिया हुंदा है, अपनी जमीर दी आवाज नूं जो नहीं सुनदा, वो फिर वार वार जूना दे अंदर ही भटकदा है, होर जाए किथे, उहनूं शरीर बदलने पैंदे ने, जूना बदलनियां पैंदियां। तो फरीद साहब इशारतन हुक्म कर रहे ने, कहन लगे ना ते सहुरे घर दे अंदर टोई मिली रब जी दे घर दे अंदर, ना पेके घर दे अंदर ही रहन वास्ते थां मिलिया, शरीर बुढ़ा होया, शरीर नूं मौत आई, किसे नूं कहिए तेरा बड़ा प्रेमी सी इहनूं घर दे अंदर रख छड, कौन रखेगा, मुर्दे नूं की करोगे रख के, रखना भी चाहोगे किस काम आएगा। पेईए ना ही थाओ, ते फिर जिस परिवार वास्ते, कुटुंब कबीले वास्ते मनुख अपनी जमीर नूं मुर्दियां करदा है, मेरा मतलब ये नहीं है कि परिवार नूं छड्ड देना है, परिवार दी लालना पालना नहीं करनी। गुरु नानक साहब ने सिखाया रहना संसार विच, रहना परिवार विच, ते जे तेरे उते दो चार पंज बच्चियां दी कोई परमात्मा वल्लों जुम्मेवारी आई है, ते फिर उस जुम्मेवारी नूं भी तूं निभाउणा है, ते निभाउणा भी चंगे तरीके दे नाल है, परमात्मा वल्लों मिली सेवा समझ के जुम्मेवारी नूं करना भी है, निभाउणा भी है। तो अर्ज मैं कर रहा सा, रब जी ने ते नहीं कहा कि परिवार पालदा पालदा आत्मिक मौत ही कबूल कर, परिवार पालदा पालदा जिहनी जमीरी तौर दे उते मुर्दा बन जा। तो बेनती मैं ये कर रहा सा कि परमात्मा दे देश केवल जिउंदियां आत्मावां जिउंदियां रूहां नूं जगह है, मुर्दियां रूहां नूं नहीं, मुर्दियां रूहां नूं शरीरां दे अंदर भटकना ही पैंदा है। जिन्हां वास्ते असीं अपनी रूह नूं मुर्दा कीता है, अगर उन्हां नूं परिवार वालियां नूं मर जाण तों बाद मुर्दे दा सुपना भी आ जाए ना, सुपना, ते परिवार वाले फिर पंडतां पांध्यां दे कोल पखंडियां दे कोल चलदे ने, जाके कहिंदे ने जी साडे घर दा फलाना फलाना मैंबर मर गया सी, ते अज साडे सुपने दे अंदर आया, परिवार दा ते इन्ना के साडे नाल, मोह इन्ना के साडे नाल, जिउंदे जी अगर जवान पति घर विच नहीं आया, कुदरती लेट होया है, ते पत्नी नूं इस गल दा फिक्र बनदा है भी समा काफी हो चुका है, आया क्यों नहीं, जवान भैण भी फिक्रमंद हुंदी है भाई आया क्यों नहीं, मां भी फिक्र विच रहिंदी है पुत्र आया क्यों नहीं, पिता भी फिक्र करदा है कि धी नहीं आई, पुत्र नहीं आया, आखिर कारण की है। जिउंदे जी जो इंतजार करदे रहिंदे ने कि लेट होया है आया क्यों नहीं, मरण तो बाद वो इंतजाम कराउंदे ने कि इहदा हुण सुपना भी ना आवे, इहदी याद भी ना आवे, और ये हकीकत है, मैं कोई अत कथनी तुहाडे सामने बयान नहीं कर रहा। फिर अपने घर दे सामने धागे बनवाउंदे ने, उपाय यतन कराउंदे ने, पखंडियां दे कोलों पंडतां दे कोलों, इहदा सुपना भी नहीं आउणा चाहीदा, इह साडे ख्यालां विच भी ना आवे। इतनी असलियत समाज दी खोल के गुरबाणी साडे सामने रख रही है, सानू ना समझ आवे ते साडी अपनी कमी है, गुरबाणी दा दोष इहदे विच नहीं है। तो खैर कह रहे ने भगत फरीद साहब जी, सहुरे टोई ना लहे पेईए ना ही थाओ, पिर वातड़ी ना पुछे, पिर मैंने पति, वातड़ी मैंने वात लैने, खबर लैने, पति परमात्मा तेरी वात पुछदा नहीं, तन तन मैंने जीव इस्त्री सुहागण लाओ, हे जीव इस्त्री तू अपने आप नू ना दे रख के मैं सुहागण, पति दे नाल तेरा मेल जोल नहीं, पति दे नाल प्यार नहीं, पति दे नाल बहना उठना नहीं, पति दे नाल बोल बाणी नहीं, पति दी चार दवारी विच नहीं, पति दी मान मर्यादा विच नहीं। ते फरीद साहब कहन लगे गल्लां दे नाल सुहागण बनी रह, कौन रोक सकदा है तेनू कि तू अपने आप नू सुहागण ना कह, पर सुहागण होना गुणा दा ना है, केवल लिबास दा ना सुहागण नहीं है।

गई कथूरी गंद, जो बन जांदे ना डरा, जे शह प्रीत न जाए। फरीदा किती जो बन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। फरीदा चिंत खटोला वान दुख, ब्रह विशावन लेप। एहो हमारा जीवना, तू साहिब सच्चे वेख। एहो हमारा जीवना, तू साहिब सच्चे वेख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो। सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा, जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान, नाती तोती संभी सुती आए नचिंद, जीव इस्त्री ना तोके। संभी दा मतलब हुंदा है सज संवार के, अपना शिंगार करके। ना के कपड़े बदल के, इशनान पान करके, शिंगार हार करके, सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौ गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीते। हार शिंगार इशनान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत, चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौ गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, हिंग दी बदबू बड़ी है, ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंग दी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। अखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी गंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नू खोलन दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है, पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेश भूषा पहरावे, तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ए महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जांदी है, तन करके मन करके प्रवेश नहीं करदे। किसे दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन तारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर ओह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उते मुसल्ला रखदा होवे,
सूफ गाल होवे भावे ओदा लिबास काला होवे। सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोडे दे उत्ते मुसल्ला, मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है। मोडे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बाहरों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत ओदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबक वो अपने जीवन नूं गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रखिया होवे, हथ विच गुटका होवे और वेशभूषा चोला लम्मा होवे, गिट्टियां तक चार माला सुटियां होण, दाड़ा प्रकाश होवे, पग दा रंग चंगा होवे, पोच के बीबी पग बद्दी होवे, वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है, सिख है ते सिख भी कट्टड़ है। पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा एक भी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचनां दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है, फिर ते बगले वाला ही लिबास से फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है। हिंदुआं दे जीवन दे अंदर गीता दे श्लोक नहीं आए, जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआं दी जीवनी दे अंदर। कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां, कुरान दी जगदी हुई शमा, कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है। मुसलमाना दे जीवन विचों कुरान नजर नहीं आउंदे, अगर आउंदे है ते ओ मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने, बड़े थोड़े। खिमा मंग लवा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार द्वारे दे अंदर बंद है। साडे जीवन विचों बाणी दा कोई बचन नजर नहीं आउंदा और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे, हकीकत है। दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है, गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है। धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है, बह के दो घड़ियां सुनना है, जां सुनाउना है, मत्था टेकना है ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है, जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है, छिल ला लैनी है, या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है, वधीकी करनी है, नफरत करनी है, ईर्ष्या करनी है, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा। अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख तां हां पर विखावे दे सिखां हकीकत विच सिख नहीं है। सिखी केवल बारले पहरावे दा नां नहीं। और ये बेनती मैं अक्सर करदा ही रहिंदा, क्यों करदा रहिंदा, क्योंकि साडा ध्यान बाहर जुड़दा है, पहरावे दे उत्ते जुड़दा है, अंदर नहीं जांदा है। गुरबाणी दे नेम, गुरबाणी दे नुक्ते, गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ ते कारोबार करदिआं वक्त, वेखदे वक्त, बोलदे वक्त, सोचदे वक्त, चलदे वक्त तुहानूं गुरबाणी दे ओ बचन चोट करदे रहिण कि तू इस मार्ग ते चलना, इस मार्ग दे उत्ते नहीं चलना। अगर ते आप बाणी दे अनुसार चल रहे हो, कह सकने आ सच्चे सिख हो। खिमा चाहवांगा नहीं चल रहे ते फिर भेखी सिख हो, केवल भेख करके पहरावे तो नजर आ रहे सिख हो पर अंदरों सिख नहीं हो। उहदे विच मैं भी आप भी शामिल हाँ, तुसी भी शामिल हो। तो खैर, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने एक सुहागण ने इशनान पान कर लिया है, हार शिंगार कर लिया है, पर पति दे नाल सुला सफाई नहीं है, पति दे नाल मन मुटाव है, ते फिर वह सुहागण कादी होई। कहना की चाहुंदे ने कि धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां बंदा धर्म दे अडंबर बारों बारों कर लैंदा है, पर पति परमात्मा दे नाल सुला सफाई नहीं, लैन देन नहीं, बैन उठन नहीं, पति दे विचारां दे नाल सहमति नहीं। ते भगत जी कहन लगे फिर अपने आप सुहागण है, अपने आप दे अंदर सिख है, हकीकत विच नहीं है। हुण मैं एक होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चलां। एक पासे एक पागल मनुख, दूसरे पासे एक रब दा प्यारा भगत मनुख, इन्हां दोवां दे मन दे अंदर जप चलदा है, दोवां दे मन दे अंदर।
ਜੋ ਆਮ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸ਼ੁੱਭ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਕਦੀ ਮੰਦੇ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਉਤਲੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਪ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਪਾਗਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਉਹੀ ਜਪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਲ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ
तीन भाषावां दे अंदर हिंदी विच याद, पंजाबी विच चेता ते संस्कृत दे अंदर सिमरन। जिवें पानी, कोई पानी नूं पानी कह देंदा है, कोई पानी नूं जल कह देंदा है, कोई पानी नूं नीर कह देंदा है, कोई पानी नूं वाटर कह देंदा है, कोई पानी नूं आब कह देंदा है, कोई पानी नूं जल कह देंदा है। आखिरकार चीज देखी है ना, उहदे नां बड़े ने चीज देखी, पदार्थ इको ही है, किरिया इको ही है, कर्म इको ही है, उहदे नां तिन ने, याद करना, चेता करना, सिमरन करना। इन्हां तिन्नां विचों जो सब तो मशहूर लफज होया वह है सिमरन। सिमरन तुहाडे मन दे नाल संबंध रखता है। मैं फिर याद करा रहा, याद करना। ते हुण इस वक्त बह के तुसी अपने मन दे अंदर किन्नू याद कर रहे हो, किसे दूसरे नू पता लग रहा कि तुहाडे मन दे अंदर याद की माला चल रही है। तुसी इंडिया दे अंदर अपने किसे सज्जन मित्र नू याद कर रहे हो, भैन भाई नू याद कर दे, रिश्तेदार नू याद कर दे, या गुरु नू याद कर दे, किसे नू समझ आ रही। ते याद करन वास्ते तुहानू किसे विधि विधान दी रचन दी लोड़ पई कि तुसी दूर बैठे हुए अपने मां बाप नू याद करना है, ते तुहानू किसे विधि दे तहत याद करना पएगा। कि याद करन लग्या विधि दी लोड़ पैंदी। इस तो अगे मैं बेनती करांगा जप करना। जप वखरा है ते सिमरन वखरा है। तो खैर, मन दे अंदर भुख होवे परमात्मा नू मिलन दी, मन दे अंदर प्यास होवे रब जी दे नाल मिलाप करन दी, आप जुबान तो वाहिगुरु कह लो, वह तुहाडा सिमरन बन जाएगा। वाहिगुरु कहन दे नाल अंदर याद बन रही है जां नहीं बन रही। जुबान तो वाहिगुरु कहना यह है जप करना। बड़े ध्यान नाल मेरी बेनती नूं समझ लेना, नहीं तो मन शंके विच चला जाएगा। जुबान दे नाल वाहिगुरु बोलना, मूल मंत्र कहना, बाणी नूं पढ़ना, इहदा नां है जप करना। जपिया जांदा है जुबान दे नाल, जपिया जांदा है रसना दे नाल। सिमरन रसना दे नाल नहीं हुंदा। सिमरन दा संबंध तुहाडे मन दे नाल है, ते सिमरन हुंदा है मन करके। कदी कदी इस तरह हुंदा है जुबान किसे होर नूं जपदी है ते मन किसे होर नूं चेता करदा है, मन किसे होर दे सिमरन विच है। जिथे मन जुड़िया है उहदा नां सिमरन है, जिथे जुबान जुड़ी है उहदा नां जप है। जिन्हों जुबान बोल रही है, जुबान उहदा जप कर रही है। पर यह जरूरी नहीं है कि जिहदा जप जुबान कर रही है मन भी उहनूं चेते करदा है जां नहीं करदा, यह जरूरी नहीं है। और ये तुसी अपने रोजमर्रा जीवन दे अंदर वेख लो, जुबान श्री जपजी साहब दा जप कर रही हुंदी है ते मन किधरे दूर दराडे होर किसे नूं चेता कर रहा हुंदा है। मन जपजी नूं नहीं जप रहा, जुबान जप रही है। जुबान वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप कर रही है पर मन नहीं जप रहा। मन किधरे सज्जे खब्बे दूर दराडे निकल के सैर सपाटे दे अंदर मगन। जिथे मन है उहदा नां सिमरन है, जिथे जुबान है उहदा नां जप है। और यह जरूरी नहीं कि जिहदा जप कर रहे उहदा सिमरन है। जप करन लग्या जुबान नूं हिलाउणा पैंदा है, जुबान नूं इस आहर दे अंदर लाउणा पैंदा है, इस कारज विच जुबान नूं लिया के खड़िया करना पैंदा है, जप करना है। ते जिहदा सिमरन करना है उत्थे मन नूं वी लिया के खड़िया करना पैंदा है। अगर गुरु दा सिमरन करना है ते मन नूं गुरु दरबार विच लिआउणा पएगा, मन नूं गुरु बाणी दे नेड़े लिआउणा पएगा। अगर मन गुरु बाणी दे नेड़े नहीं ते जुबान जप करदी रहेगी, जुबान दा जप चलदा रहेगा, मन नूं रस मिलेगा ही नहीं। मन नूं रस कदों मिलदा है? जदों मन आप करदा है, जदों मन आप काम करदा है उदों इहनूं रस मिलदा है। दूसरे इंद्रे दे कीते हुए काम कोलों मन नूं रस घट मिलदा है। ਇਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦਸ ਦਿਨ, ਵੀਹ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਬੀਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੀਹ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਰਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ,
प्रश्न करेगा। भुखा मनुख प्रशादे नू वेखदिया बस अपने अंदर लजान दी करदा है, खान दी करदा है। भुखे मनुख का प्रश्न कोई नहीं है, भुखे मनुख दे प्रश्न पिछे रह जांदे ने। क्यों पिछे रह गए ने? क्योंकि भुख बड़ी है। एक एक रोम जुबान का काम कर रहा है, रोम रोम विचों आवाज आ रही है प्रशादा चाहिदा है, नहीं प्रशादा मिलेगा जान निकल जाएगी, प्रशादा चाहिदा। बिल्कुल बंदा मरण दे किनारे होवे, भुख तो तंग आके आप उहदे कोल 2 किलो सोना लिजा के रख दिओ ते उहनू कहो भी तैनू जंजीरां दे नाल इत्थे बन्ह के रखना है, तैनू किधरे जान देना नहीं, 1 महीना होर ते सोना 2 किलो तैनू रोज मिल जा करेगा। वह कहेगा मैनू सोना नहीं चाहिदा, मैनू भोजन चाहिदा है, प्रशादा चाहिदा है। सोने दे नाल मेरे प्राण नहीं बचने, प्राण बचने ने प्रशादा अंदर जान तो बाद, प्राण मेरे चलणगे भोजन रोटी अंदर जान तो बाद। हुण सोने दा मैं की करां, इनू वरतांगा तां ही जे मैं जिंदा रवांगा, ते जिंदा मैं रवांगा तां जे मैनू भोजन मिलेगा। मेरी मंग प्रशादा है, मेरी मंग सोना नहीं है। अगर इस तरह दी अंदर भुख जाग जाए परमात्मा दे संबंध विच, आप जुबान तो कुछ भी बोलो वो सिमरन बन जाएगा, अंदर भुख नहीं, अंदर प्यास नहीं, ते खिमा जावांगा फिर रस भी नहीं बनता। रजे हुए मनुख दे सामने थाल भर के होर परोस के रख दो, उनू कहो भी बड़ा स्वादला भोजन है होर खा, वो छत्ती नाटक करता है, छत्ती सवाल करता है, दे विच नमक ज्यादा है, मिर्च घट है, खट्टा है, मिठा है, कौड़ा है, पर भुखा मनुख ते प्रश्न नहीं करता। गुरु ग्रंथ से पातशाह दा एक वचन आंदा है कि भूखे खावत लाज ना आवे। जद भुखा मनुख भोजन नू खा रहा है ते लाज कुलाज नू पिछे रख के खा रहा है, खुदियावंत ना जाने, खुदियावंत कहिंदे ने भुखे नू, खुदियावंत ना जाने लाज कुलाज कुबोल, कोई मैनू वेख के की बोलेगा, मेरे वास्ते की सोचेगा, भुखा मनुख नहीं सोचता। और एक होर बेनती करा, भुख लगी होवे और दस्तूर होवे कि तुहानू नौकरां चांकरां दे हथों भोजन नहीं मिलना, कोई होवे राजा महाराजा अमीर शाहूकार होवे, पर किसे आश्रम दा ए नियम होवे भी इथों आप ही मंग के खाना पैना है, ते फिर भुख दा सताया होया एक बादशाह भी भिखारी दी तरह हथां नूं बर्तन बना के मंगण वालियां दी कतार विच शामिल हो जांदा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, उन्हां दे घर वाली महाराणी जिंदा, शेरे पंजाब दी मौत तो बाद नेपाल दे अंदर महाराणी जिंदा नूं आप एक आश्रम विचों पतलां दे उत्ते मंग के खाना पिया। महाराणी जिन्हों रोज रोज नौकरानियां दासियां अगे पिछे घूमदियां नजर आउंदियां ने, सेवा करदियां नजर पैंदियां ने, अजाब मंग के खा रही है। क्योंकि भुख है ते मंग बनदी है, भुख ही नहीं है ते फिर मंग भी नहीं है। अगर अंदर भुख है ते मंग बनदी है, अगर अंदर भुख नहीं तो मंग बनेगी किवें? धन दी समझ है, धन दी भुख है, धन दी मंग भी है। गुरु कोलों, पिता कोलों, दूसरे कोलों, तीसरे कोलों अगर धन की चाहत ही नहीं, धन की भुख ही नहीं, तो धन की मंग किवें बनेगी? तो धन नूं प्राप्त करने वास्ते फिर आप यतन पर यतन भी कदों करोगे? यतन भी तो ताई आरंभ करोगे ना, जे पहला अंदर भुख बनी है, उहदी प्राप्ति वास्ते फिर आप राह भी लभने शुरू कर दोगे। इस तरह मिलेगा। औलाद की भुख है, औलाद की मंग है, औलाद की भुख ही नहीं ते औलाद की मंग भी नहीं। तंदरुस्ती की भुख है ते तंदरुस्ती की मंग है, तंदरुस्ती की भुख ही नहीं ते तंदरुस्ती की मंग भी नहीं। जिस पदार्थ की तुहाडे मन के अंदर भुख नहीं बनी, चाहत नहीं बनी, उहदी मंग भी नहीं बनती। ते जद मंग नहीं बनी ते उहनू प्राप्त करन वास्ते फिर आप यतन भी क्यों करोगे? यतन ते ताई करोगे जे भुख बन गई है, चाहत बन गई। परमात्मा की भुख नहीं है, परमात्मा की मंग भी नहीं है। हां परमात्मा कोलों मंग है, परमात्मा की मंग नहीं है। बड़े ध्यान नाल मेरे इन्हां बोलां नूं समझना, परमात्मा कोलों मंग है,
ਤੇ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਧਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦਿਆ ਬੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲ। ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਖਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਲਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਸ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਫਿੱਕਾਪਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਇਸ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ

उपजय सो तन जानम सान बिरह बिरह अखिय बिरह तू सुल्तान। फरीदा जित तन बिरहो ना उपजय सो तन जानम सान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र कोत दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज रोज सरवण करदे आ रहे। भगत फरीद साहब जी दे जो सलोक अज पढ़ के सुनाए गए उन्हां विचों पहला सलोक है, जोबन जांदे ना डरा जे शहे प्रीत न जाए। गुरु तेग बहादुर पातशाह जीवन नूं तीन हिस्सों दे अंदर वंडदे ने, बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। सब तो पहला पैर बालपन दा, दूसरा जवानी ते तीसरा ते अखीरला बुढ़ापा। हुण वेखना यह है कि बालपन विच मैं की पाया ते की गवाया, ते जद ये वेखांगे बालपन दे अंदर मिलिया की है, बालपन दे अंदर गया की है। दुनियावी पक्ष दे अंदर ते बालपन विच कुछ ना कुछ मिलिया है, अध्यात्मिक दुनिया दे अंदर बालपन विच मिलिया है, पर हजारां विचों किसी विरले बच्चे नूं बाकी बच्चियां नूं धर्म दा ज्ञान बालपन विच नहीं मिलिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर दो बच्चियां दा जिक्र आउंदा है जिन्हां ने बालपन दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा दे ज्ञान नूं पाया और मुकम्मल तौर ते पाया। दो बच्चियां दा जिक्र आउंदा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इन्हां दोवां महान पुरखां दी बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, ना भगत त्रू जी दी ते ना प्रहलाद जी दी, पर इन्हां दोवां दा नां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बड़ी वार आया। और ए जो मैं बाणी दे दो बचन पढ़ के सुनाए, ए भगत कबीर साहिब जी दे ने। भगत कबीर साहब परमात्मा दे नाल जुड़न दी उदाहरण दुनिया दे सामने जद रखदे ने, ते इन्हां दो बच्चियां नूं दो भगतां नूं उदाहरण बना के पेश करदे ने। राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद, दोवें छोटी उम्र दे भगत ने। तकरीबन 5 साल दी उम्र दे अंदर भगत त्रू नूं वैराग बनिया है और रब्बी पेंडे दे उत्ते निकल तुरिया है। तकरीबन इन्नी उम्र दे अंदर भगत प्रहलाद नूं चोट मिली है, ठोकर मिली है, ते रब्बी ज्ञान नाजल होना शुरू हो गया है छोटी उम्र दे अंदर। बाकी तकरीबन जिन्ने बच्चे ने उन्हां दा बालपन खेडन दे अंदर ही बीत जांदा है, रब्बी रस दे अंदर नहीं बीतदा। रब दा ज्ञान भी नहीं हुंदा, रब दे नाल सांझ भी नहीं हुंदी। बालपन बीतदा है, पर बीतदा है खड़ौणियां दे नाल सुरत नूं जोड़ के, इस तों अगे सुरत जांदी नहीं है। जवानी बीती तो प्रश्न यह पैदा हुंदा है, मैं जवानी दे अंदर पाया की ते जवानी दे अंदर गवाया की। जवानी दा मिल जाना काफी नहीं, यह भी ते वेखना पएगा ना जवानी दे अंदर मैं की खत्म किया है ते की मैं वादा किया है। क्योंकि भगत फरीद साहब जी गल जवानी दी कर रहे ने, जोबन जांदे ना डरा, जोबन मैंने जवानी,
हुण जवानी चली ते जानी है। चाहे ए चंगे तरीके दे नाल जवानी दे दिन बीत जान, इन्हें तां वी नहीं रहना, जवानी ने खिसक जाना है। ते पावे मंदे तरीके दे नाल दिना नू बताईए, जवानी ने तां वी तुरी जाना है। रुकना इन्हें साढ़े पास नहीं है। हजार यतन करो जवानी रुक जाए, रुकदी नहीं है। रोकन दा लोक यतन भी करदे ने, वालां दा रंग बदल बदल के, काला कर करके, होर तौर तरीकियां दे नाल, पर कदों रुकदी है, चली जांदी है। परमात्मा दी नेत दे मुताबक आउणी सी आई है, परमात्मा दे अटल नियम दे मुताबक इन्हें जाना है, और जाना ही जाना है, इन्हूं रोकन दा कोई उपाय नहीं है। वैसे चलो मैं मुखसर बेनती रखदा चला, इन्हां तिन्नां पैरां विचों मनुख दा प्यार सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही, लगाव सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही। किसे नूं उम्र पुछो किन्नी है, उम्र कटा के बयान करदा है। 60 वाला, 50, 50 वाला, 40, 40 वाला, 30, उम्र कटा के बयान करदे ने। अंदर जो सोच कम कर रही है कि उम्र वड्डी दसन दे नाल कहणगे वडेरा हो गया, बुढ़ा हो गया। वालां दा रंग चिट्टा दिसण दे नाल लोग कहणगे बुढ़ा हो गया। ना वालां दा चिट्टा रंग ही रहे ते उम्र भी छोटी कटा के झूठ बयान करके दस दिओ, लोकां दी समझ विच ही आवे कि अजे जवान है। पर कईयां दा तुरन दे अंदाज बदल जांदे ने, चाल बदल जांदी है। चाल ही दस रही है बुढ़ा है, पर वो कबूल नहीं करदा मैं बुढ़ा। कईयां दा बहना उठना, चेहरे दीयां चरूड़ियां, अंग अंग उच्ची आवाज दे के कह रहा है तू बुढ़ा है, पर वो मानता नहीं है कि मैं बुढ़ा। खैर मेरा विषय नहीं, किसी वक्त मैं फिर वजाहत करांगा। जवानी बीत जांदी है, चाहे नू चंगी बता लो, चाहे मंदे तरीके दे नाल बता लो, पर वेखना है कि मैनू जवानी दे अंदर मिलिया की ते मेरे कोलों जवानी दे अंदर गया की है। जद आप पूरी ईमानदारी दे नाल बह के विचार करोगे कि जवानी विच पाया की ते गवाया की, जवाब तुहानू मिल जाएगा गवाया बहुत कुछ है ते पाया कुछ भी नहीं है। जे पाया है ते बड़ा थोड़ा पाया है, बहुत थोड़ा पाया है। एक बेनती मैं होर करदा चला, जेब दे अंदर धन दा होना काफी नहीं, ए भी पता होए मैं धन दे के इहदे बदले विच की खरीदना है। धन दे बदले दे अंदर कौड़े, अति कौड़े जहर वर्गे पदार्थ मार्केट विचों मिलदे ने, ते धन दे बदले मिश्री शहद भी बाजार विचों मिलदे ने। कड़वाहट मिलदी है धन दे बदले, मिश्री मिठास मिलदी है धन दे बदले। धन दे बदले जान लेवा चीजां मिल जांदियां ने, धन दे बदले तंदुरुस्ती देन वाले पदार्थ दवाइयां चीजां मिल जांदियां ने। धन दे बदले तुसी अपने मन नूं बेचैन कर सकदे हो, धन दे बदले थोड़ा जिहा चैन ते शांति नूं भी बिहाजिया जा सकदा है। धन नूं पब्बां दे अंदर, क्लबां दे अंदर, वैसिया द्वारे दे उत्ते, अयाशी बदमाशी दे अड्डियां दे उत्ते खर्च करो तो मन नूं बेचैनी मिलेगी, चैन ते नहीं। धन नूं गुरु कारजां दे हित, परोपकार दे हित, चैरिटियां लई खर्च करो तो धन दे बदले चलो ज्यादा नहीं, मामूली किनका मात्र शांति ते मिलेगी ना, लोकां दीआं इह असीसां ते मिलणगीआं ना जिन्हां दे भला करोगे, और गुरु की असीस भी मिलेगी क्योंकि दसवंध शुभ कारजां वास्ते खर्च करन दा हुक्म है। इत्थे मैं उदाहरण अर्ज कर रहा सा, जवानी, जवानी दे बदले की गवाया ते की पाया, ए अपने गिरवान दे अंदर आप झाती मार के, अपने आप ते प्रश्न करके अपने कोलों जवाब मंगो। जवानी दे अंदर की पाया, मैं मुखसर ए भी बेनती करदा चला, काम पाया है जवानी दे अंदर, राम नहीं पाया, काम पाया है। ते काम शिखर दा पाया है, राम रंचक मात्र भी नहीं पाया। जवानी दे अंदर पाया है, पर शैतान नूं पाया है, शैतानियत बड़ी है जवानी दे अंदर, खिमा जावांगा। शैतान पाया है, भगवान नहीं पाया, और फिर रंचक मात्र भी नहीं पाया। देश विदेश दे अंदर विचरन तो बाद, इह ते मेरा अपना निजी तजर्बा है, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे अंदर जिहड़ी संगत मिलदी है, संगत दे दीदार करन लई मिलदे ने, उन्हां दे अंदर गिणती बहुत ही बजुर्गां दी हुंदी है, जवानां दी नहीं हुंदी।
क्यों जवाना दी नहीं होंगी? क्योंकि जवानी नू शैतानियत तो वेल मिले ते गुरुद्वारे आवे, जवानी नू काम क्रोध निंदा चुगली ईर्ष्या बखेली तो वेल मिले ते गुरुद्वारे आवे। जो कोई जवान आ रहे हो उन्होंने मेरे वालों उच्चे ची बधाई। तो खैर जवानी के अंदर पाया है क्रोध धोखा धड़ी अयाशी बदमाशी के अड्डे होर दुनिया भर के अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी जवानी विच। दूसरे पासे धर्म दे मार्ग दे उते जवानी नू खर्च करके की पाया है? इधर वेखो भई मेरी जवानी दे चार दिना दे अंदर मैं धर्म दी दुनिया विचों की पाया है? ते तुहानू इधरों जीरो मिलेगी, कुछ भी नहीं पाया। ना धर्म दा ज्ञान, ना धर्म दा पेंडा तय कीता, ना शांति बनी, ना सुकून बनिया, ना चैन बनिया, कुछ भी नहीं बनिया। जवानी बीत गई, जवानी चली जाए विकारां दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैनू अफसोस बड़ा है, जवानी चली जाए रब दे प्रेम दे अंदर। भगत फरीद साहब कहिंदे ने मैनू रंचक मात्र भी अफसोस नहीं है। जोबन जांदे ना डरा, कहन लगे जोबन चला जाए कोई डर नहीं है, पर यह वेखना है कि जाए किस दे बदले। तन चला जाए कोई गल नहीं, पर यह भी ते वेखो ना जाए किस दे बदले। जीवन चला जाए, जीवन की कुर्बानी हो जाए, पर कुर्बानी जिस मंजिल तो कर रहे हो वह मंजिल ही कोई खास ना हो, आम मंजिल हो तुहाडी कुर्बानी का की अर्थ होया? कुर्बानी का मुल की पेगा? मुल कुर्बानी का उन्हें पाना है जिदे तो कुर्बान हो रहे हो। अगर काम तो कुर्बान हो रहे हो तो की मिलिया है? निंदा चुगली ईर्षा बखीली तो कुर्बानी चली गई, कुर्बानी दिती गई जवानी दे तो की मिलिया? हौके चोरे कले कलेश यही तो मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। धोखा धड़ी अयाशी बदमाशी तो जवानी कुर्बान हुई तो मिलिया की? चिंता मिली, कलेश मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। भगत जी कहिंदे ने जवानी चली जाए मैनू डर नहीं है, जोबन जांदे ना डरा। जोबन जा रहा है, जवानी जा रही है, जवानी की कुर्बानी है, पर कोई डर नहीं है। भगत जी डर किस गल का है? कह लगे जे शह प्रीत ना जाए, रब की प्रीत ना चली जाए। जवानी चली जाए, जवानी दे इवज जवानी नू खर्च करके जवानी दे बदले जे मैनू थोड़ा जिहा रंचक मात्र परमात्मा दा ज्ञान मिल जाए, परमात्मा दा प्रेम मिल जाए, ते कहन लगे मैं जवानी नू कई वार कुर्बान करन लई तैयार हां। कई वार, एक वार नहीं अनेक वार कुर्बान करन लई तैयार हां। अगली पंक्ति विच भगत जी कहिंदे ने फरीदा कितनी जोबन, किन्ने सारे जोबन, किन्नियां ही जवानियां, प्रेम बिन आखिया प्रीत तो बिना, कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए, किन्नियां जवानियां मुरझा गई ने रब जी तेरी प्रीत तो बगैर। किन्नी वार जवानी मिली है, जवानी कमला गई है तेरी प्रीत तो बगैर। एक बेनती मैं संबंध विच होर करदा चला, जे आप चाहो कि जवानी जां जीवन इस वास्ते मिलिया है कि दो बच्चियां नू जन्म देना है, उन्हां नू पढ़ाउणा लिखाउणा है, उन्हां दे ब्याह कारज करने ने, बस इस वास्ते जवानी जां जीवन मिलिया है। प्यारे मेरी बेनती नू बिल्कुल न्यूट्रल माइंड करके समझण दी कृपा करियो। इह काम इस जून विच ही नहीं है, असी पिछलियां जूनां विच भी करदे आ रहे हां। जन्म बच्चियां नू दित्ता है ते पिछलियां जूनां विच भी दित्ता है, इस जून विच ही नहीं। पशुआं दे भी ते बच्चे हुंदे ने, परिंदियां दे भी ते बच्चे हुंदे ने, सप दे भी ते बच्चे ही हुंदे ने। जितनियां जूनां ने उन्हां सारियां जूनां दी वेल वध रही है, उन्हां सारियां जूनां दी पीढ़ी चल रही है, पर तुहाडी पीढ़ी चले। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सूत्र साडी झोली दे अंदर बख्शे, तेरी पीढ़ी चले पर किवें चले। गुरु के कीर्तनी अक्सर शब्द का गायन करया करते ने, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। तेरी वेल वधन दे नाल नाल तेरे मन दे अंदर धर्म का प्यार वधे, तेरी जीवन तेरी जवानी दे अंदर धर्म का चा धर्म का प्रेम बने। अगर वेल वध रही है और धर्म तो बगैर वध रही है, खिमा चाहवांगा वार वार वो वेल पशुआं दे तोली वध रही है। बच्चे साडे ने, बच्चे पशुआं दे ने,
अपनी हैसियत दे मुताबक असी घर बना लैने आ, ज्ञान सूझ बूझ दे मुताबक ते अपनी सूझ बूझ दे मुताबक बाकी दे परिंदे ते पशु अपना घर बना लैंदे ने, चूहे खुड्डा बना लैंदे ने, पंखी रुखां दे उत्ते आलणे बना लैंदे ने, कोई किस तरह का घर बना लैंदा है, कोई किस तरह का घर बना लैंदा है, जिवें दी उहनां दी हैसियत उवें दा उहनां दा घर, अपनी हैसियत दे मुताबक असी घर बनाया। बच्चियां दे तल दे उत्ते असी पशुआं दे बराबर चले गए, घर बनाउण दे तल दे उत्ते असी पशुआं दे बराबर चले गए। हुण मनुखा जून दी विशेषता विलखणता इह चाहीदी सी कि इह परमात्मा दे नाल अपने प्रीत दे नाते गंढ बना लवे, सांझ पा लवे। अगर इन्हें प्रीत परमात्मा दे नाल पा ली है, इन्हें अपनी विशेषता नूं पहचानिया, विलखणता नूं पहचानिया, प्रीत परमात्मा दे नाल नहीं बने, इहदी जवानी ते इहदा जीवन पशुआं दे तुल ही गया है, होर कुछ भी नहीं। ਕਿਵਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਭੋਜਨ ਭੋਗ, ਭੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁਲ ਨੇ। ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਇਹੀ। ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪਸ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਫਲਸਫਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਪਸ਼ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਮਨੁੱਖਾ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਪੈਗੰਬਰੀ, ਰਹਿਬਰੀ, ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਮਾਮ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਬ, ਇਹ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੂਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਰਿਹਾਲੀ, ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਰਿਹਾਲੀ, ਸਰਿਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬੁਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ।
जवानी दे दौर विचों निकलदियां निकलदियां उस भाई विधि चंद नूं संगत मिल जांदी है गुरु अर्जन देव साहब जी दी। ते ओ विधि चंद बाद विच सूरमा भी बन गया, बाद विच गुरमुख भी बन गया। मनुख एक है, उन्हें अपना मन बदलिया ते चोर बन गया, उन्हें अपना मन बदलिया ते गुरमुख बन गया। मनुख ओही है, शरीर नहीं बदलिया। विधि चंद दियां लत्तां बाहां नक्शो निगार रूप रंग कत काठ ज्यों दा त्यों रहा है, कुछ नहीं बदलिया। अंदर बदलिया है, मन बदलिया है, मानसिक मंडल बदलन करके लोकां दे अंदर प्रचलित होया। विधि चंद चोर है, मानसिक मंडल नूं अंदरों तब्दील करन करके लोकां दी जुबान ते ना आया। विधि चंद गुरमुख है, विधि चंद चंगा है, विधि चंद सूरमा है। अर्ज मैं कर रहा सां अपने आप नूं अंदरों बदलन दा वरदान परमात्मा ने साडी झोली विच पाया है। तुसी अपने आप नूं अंदरों बदलदे बदलदे नरोल शैतान दी तरह बन सकदे हो, शैतान दी तरह। खिमा चाहवांगा लफज बोलने मजबूरी ने, और तुसी अपने आप नूं अंदरों बदलदे बदलदे नरोल भगवान दी तरह बन सकदे हो, निरंकार दी तरह। तुसी अपने आप नूं बदलदे बदलदे साधु बन सकदे हो, तुसी बदलदे बदलदे चोर बन सकदे हो, तुसी परोपकारी बन सकदे हो, दुराचारी बन सकदे हो, सब तुहाडे वस विच है। तुसी अपने आप नूं की बनाउणा है, एवें समझ लो जीवन एक पत्थर दी तरह है, और तुसी हो जीवन नूं घड़न वाले। बुत तराश जिहड़ा पत्थर नूं शिंगारदा है, पत्थर नूं घड़दा है, उहनूं संघ तराश कह दिंदे ने, जां बुत तराश। संघ पत्थर दा ही नां है दूसरा। तुसी जीवन नूं तराशना है, ते जीवन नूं तराशदियां तराशदियां तुहाडी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी अपने विचों मूर्ति नूं जन्म दे लो। पत्थर कदी इनकारी नहीं हुंदा कि मैं ये मूर्ति बनना है, मैं ये मूर्ति नहीं बनना। मनुख दा मन वार वार इनकारी हुंदा है, पर मनुख दे मन नूं घड़न वास्ते आम हथौड़ा ते छैनी जिहड़ी पत्थर नूं घड़न वास्ते चाहीदी, उस हथौड़े छैनी की लोड़ नहीं है, उन्हां हथियारां की लोड़ नहीं है। इनू घड़न वास्ते इकले गुरु शब्द की लोड़ है। गुरबाणी तो बाहर दा वचन है, मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा, मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। है गुरबाणी दे नाल मिलदा जुलदा, पर बाणी दे अंदर है नहीं है। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। मन दौड़दा है बुराइयां वल, रोकना किवें? गुरु शब्द दे नाल। इनू घड़ना किवें? गुरु शब्द दे नाल। सवारना किवें? गुरु शब्द दे नाल। फिर एक बेनती मैं तुहाडे सामने होर भी करदा चला, परिवार दे अंदर जो परिवार दा मुखिया हुंदा है, परिवार दे अंदर दो चार पांच दस मैंबर जिन्ने भी, परिवार दे अंदर एक परिवार दी वागडोर संभालन वाला परिवार दा मुखिया हुंदा है। उस परिवार दे आगू परिवार दे मुखिए दी जिम्मेवारी परिवार दे बाकी मैंबरां नालों वधीक हुंदी है। ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਗੂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਪਤਨ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
उठन दा यतन कर दिया ने पर उठदिया ने क्योंकि आगू जिन्हां ने बागडोर संभाले है कोई डोबन दा यतन कर रहे ते जे बेड़ी दा मलाई बेड़ी नू डोबन दा यतन करे ते बेड़ी नू बचाएगा कौन जे घर दा पहरेदार ही घर नू लुट लवे ते फिर रखवाली कौन करेगा। खैर देश दे हुकमरान देश दे डिक्टेटर देश दे राजे उन्हां दी जिम्मेवारी देश दे बाकी समूह नागरिकां नालों वध हुंदी है। ये मैं उदाहरण तुहाडे सामने लिया रहा सा जूनिया दे अंदरों सरदार जोन है मनुख जोन इस धरती मैं तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी ना बीबिया नू बेनती करा चुप दा दान बख्शो बोलो ना तुहाडी आवाज मेरे तक भी आ रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने इस धरती मैं तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी अनंत जोनिया विचों 84 लख जोना विचों सरदार जोन मुखिया जोन आगू जोन केड़ी है बंदे दे जोन मेरा मतलब मनुख दे जोन ते हुण अगर मनुख सरदार जोन विच है तो सरदार होने दे नाते दी जिम्मेवारी भी ते वध है। जो जिम्मेवारी पशुआं दी नहीं वो जिम्मेवारी तुहाडी है। पशुआं दे उत्ते इह फर्ज आयद नहीं हुंदा कि वह संगत करन वह बाणी दे नाल जुड़न परमात्मा दे नाल मिलन चुगली निंदा छड़न पशुआं दे उत्ते इह जिम्मेवारी टुकदी नहीं है। पशु इस जिम्मेवारी दे बंधन तो मुक्त ने आजाद ने पर असी इस जिम्मेवारी तो मुक्त होना चाहिए नहीं हो पावांगे क्योंकि साडे मोढ़ियां दे उत्ते खुदा वल्लों इह भार पाया गया इह जिम्मेवारी तेरी है। तू सरदार जोन विचों है सरदार जोन दे अंदर होण करके तेरे फर्ज ने तू अपने फर्जा तो किनारा काशी ना कर अपने फर्जा नू संभाल फर्जा नू याद कर फर्जा नू पूरिया कर तेरे कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने तेरे कुछ फर्ज तेरे परिवार लिए ने कुछ फर्ज समाज लिए ने कुछ फर्ज संसार लिए ने ते कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने। तू परिवार दे प्रति ते अपने सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं तो अपने प्रति की कर रहे हैं फर्ज पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परिवार दे प्रति तेरा फर्ज है तेरा परिवार है तू उन्हां बच्चियां नूं जन्म दिता है उन्हां दी लालना पालना करनी तेरी जिम्मेवारी है तू उन्हां ते एहसान नहीं कर रहा कमा के उन्हां नूं भोजन देना बना के खवाउणा यह मां बाप की जिम्मेवारी है एहसान नहीं है। तू यह ते फर्ज कर रहा है बिल्कुल मुकम्मल तौर दे उत्ते पूरा पर दूसरे पासे अपने संबंध विच तेरा फर्ज है तू अपने मन नूं सुरताल तरतीब विच करना है इस फर्ज तो दौड़दा होया नजर पै रहा किनारा काशी करदा होया नजर पै रहा अपने लिए की कर रहा है। मैं बहुत खुलिया लफजा दे अंदर बेनती करा मैं कथा कर रहा तुसी मैनू पैसे दे रहे हो मैं अपने वास्ते निजी तौर ते मेरा नेम की है मेरा नितनेम की है मेरा परमात्मा दे नाल जुड़न दा समा की है मैं किन्ना समा जुड़दा मैं अपने वास्ते की कर रहा तुसी अपने लिए की कर रहे हो यह भी ते फर्ज पछानना तुहाडा है तुहाडी जिम्मेवारी है तुहाडा फर्ज है पछाणो। प्यारियो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने जोबन जांदे ना डरा जोबन जा रहा है पर फर्ज पछाणन तो बगैर जा रहा है जोबन जा रहा है हनेरे दे अंदर टकरा मारदा होया जा रहा है जोबन जा रहा है इस तरह जा रहा है कि जिवें अन्ना होया हाथी चलदा है मस्त चाल दे अंदर इस तरह चल रहा है जोबन जा रहा है पर कित्थे जा रहा है गुरुद्वारियां मंदिरां मस्जिदां विच जोबन जा रहा है जोबन जांदा होया वेखना होवे ते पब्बां क्लबां विच जाके वेखो जोबन सारा उत्थे टुकिया होया नजर पएगा जोबन उत्थे बैठा होया नजर पएगा जोबन जा रहा है पर जा कित्थे रहा है अयाशी दे अंदर जा रहा है बदमाशी दे अंदर। अज दी सदी जिन्हों पढ़ी लिखी ते ज्ञान याफ्ता सदी कहने आ मैं ते हैरान हुंना कि मनुख ने जवानी नू जिवें राखवी रखे है जवानी नू जिवें रिजर्व कर लिया है गुनाह करने वास्ते कि जवानी दे अंदर दुनिया भर दे गुनाह करने ने जवानी दे अंदर पाप कमाउणे ने जवानी दे अंदर दुराचारी करनी है जवानी दे अंदर हर धोखा धड़ी करनी है ते बुढ़ापे नू रिजर्व रख लिया परमात्मा दे नाल जुड़न वास्ते। यह जरूरी नहीं है कि हर शरीर दे उत्ते बुढ़ापा आएगा जरूरी नहीं है जरूरी नहीं किसी की जवानी पूरी निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी जरूरी नहीं है। तो खैर जोबन जाते रहा है जा किधर रहा है हनेरे दे अंदर जा रहा है भटकदा होया जोबन नजर आ रहा है
जोबन कोई सफला हुंदा नजर नहीं आ रहा, खिमा चाहवांगा बोल कुछ कौड़े ने और मन नूं चोट ना करन। भगत जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरां जे शह प्रीत ना जाए। मेरा जोबन चला जाए मैनू डर नहीं है, झिझक नहीं है, मैं जोबन नूं छड्डन लई तैयार हां, कुर्बान करन लई तैयार हां। पर पुछिया, भगत जी जोबन दे इवज चाहिदा की है, जोबन दे बदले चाहिदा की है? आखिया, शह दी प्रीत, परमात्मा दी प्रीत चाहिदी है, रब दा प्रेम चाहिदा है। अगर जोबन दे के खुदाई प्रेम मिल गया है ते समझ लो सौदा बड़ा सस्ता मिल गया है, बड़ा सस्ता मिल गया। पता नहीं किन्नी बारे जोबन मिलिया है ते किन्नी बारे सुख गया है बुराइयां दे अंदर, कुमला गया है बुराइयां दे अंदर। ते जेड़ा बूटा सुक जांदा है, कुमला जांदा है, उन्हों ना पत्ते ही लगते ने, ना फुल ही लगते ने, ते ना फल ही लगते ने। अगर तुहाडे जोबन नूं सत संतोख दा फल नहीं लगा, भौ भावनी दे फुल नहीं लगे, श्रद्धा प्यार दीआं टहिणियां शाखावां ने इस जोबन दे उत्ते जन्म नहीं लिया, तो फिर जोबन सुक्का समझो, जोबन नूं हरिया मत समझो। जोबन दे अंदर की है? निरा सोका, निरा कमलाउणा। पर इह सोका कमलाउणा नजर कित्थों आ रहा है? क्योंकि जेड़ियां टहिणियां सुक जांदियां ने, मुरझा जांदियां ने, उन्हां दा रूप रंग चला जांदा है, उन्हां दी बहार चली जांदी है, सुंदरता चली जांदी है। मनुखी मन दी सुंदरता अलोप है, कुमलाया मुरझाया होकिया झोरियां दे अंदर नजर पै रहा है। कोई फुल नहीं, कोई फल नहीं, कोई भावना नहीं, ते कोई शांति सुकून जोबन दे अंदर नहीं, निरा अग्ञान, निरियां टकरां। जोबन दे अंदर जोश बड़ा है, पर जोबन दे अंदर होश दी अख तो बगैर चल रहे हैं। ते जे जोबन होश दी अख तो बगैर चले, ते जोबन हर दे पानी तरह होंदा है, ये रोड़ के लै जांदा है, नुकसान बड़ा करदा है। जोबन दे अंदर जोश होना जरूरी है, पर नाल होश दी अख मिलना होर जरूरी है, बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर होश तो बगैर जोबन नूं खुला छड्या जाए ते ए जोबन नुकसान बड़ा करदा है। अगर इस जोबन नूं होश दे किनारे मिल जन, होश इनू एक सीमा दे अंदर बन के चलाए, ते फिर एक दरिया दे पानी, नदी दे पानी नूं किनारियां दे विचकार विचकार रोकदे रोकदे भावे सैकड़े मील दूर लै जाओ पानी नूं, ओ पानी नुकसानदायक नहीं है जो चल रहा है, पर दो किनारियां दे विचकार चल रहा है। ओ पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नूं तोड़ के चल रहा है, फसलां नूं तबाह करेगा, पिंडां आबादियां शहरां नूं तबाह करेगा और मनुख नूं तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जोबन हड़ दा रूप बन जांदी है, जद इनू किनारे ना मिलन, इनू सीमा ना मिले, इनू होश दे नेत्र ना मिलन। अगर ये होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले ते इस जोबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा, जोबन चला जाए मैनू कोई डर नहीं है, पर इस दे इवज मिलना की चाहिदा है? परमात्मा दा प्रेम मिलना चाहिदा है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नू असी प्रेम जान लिया हकीकत दे अंदर वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम ते पशुआं कोल भी हुंदा है, शरीर शरीर दी कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर दी पकड़ विच रहिंदा है। बड़ा नीमी पत्तर दा प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी दा प्रेम है, शरीर नू शरीर दे नाल प्रेम है। और एक शरीर दूसरे शरीर कोलों रज जांदा है, शरीर कोलों भर जांदा है, ते ओ शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीरां नूं बदलना, शरीर दे नाल प्यार करना, ये पशु दे तुल प्रेम है। ये प्यार ते पशु कोल भी है। तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहीदा सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उत्ते। मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है। इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने। मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जांदी है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां दे सहारे। विचार मिल गए ने तो मित्र है, विचार टकराउणे शुरू हो गए ने तो मित्रता खत्म है, दराड़ पै जांदी।
कल तक दे मित्र अगले दिन दुश्मन बने हुए मिलते ने क्यों? एक दे विचार उच्चे हो गए ने, एक दे विचार नीवे हो गए ने, विचारां दे अंदर तकरार हो गया, विचारां दे अंदर टकराहट पैदा हो गई। नंबर एक दा प्रेम बड़ा निखित पद्धर दा, हौली पद्धर दा प्रेम, केवल शरीर दा रूप रंग नक्शो निगार वेख के किसी दे नाल प्रेम करना, पशु दे तुल प्रेम है। दूसरा प्रेम शरीर तो अगे चला गया है, हुण शरीर दे नाल लैण दे नहीं, इहदा शरीर काला है, शरीर गोरा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने किस तरह दे नहीं, गल इस तों अगे चली गई। हुण गल विचारां दे उत्ते आ गई, इहदे मेरे विचार मेल खा रहे ने, प्रेम है, नहीं मेल खा रहे प्रेम टुट जांदा है। इस तों अगे एक होर प्रेम है, उहनूं कहिंदे ने आत्मिक पद्धर दा प्रेम। मैनूं सारिआं दे अंदर परमात्मा दी आत्मा नजर आए, पहला मैनूं परमात्मा दी अंश अपने विच, ओही परमात्मा दी अंश सारिआं दे अंदर, ते जद आत्मिक पद्धर दा प्रेम बनदा है तो फिर सारिआं दे अंदर खुदा दी होंद भी महसूस होनी शुरू हो जांदी है, जो मेरे विच है ओह तेरे विच है। की फर्क पैंदा है तेरे शरीर दा रंग किस तरह दा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने, तू किस जात धर्म मजहब दे अंदर जन्म लिया है, की फर्क पैंदा है। गल ते ए है कि मिट्टी दे भांडे ने कुमार ने बनाए ने, तेरा रंग काला कर दिता है, मेरा रंग चिट्टा कर दिता है, तेरिया अखां दा आकार थोड़ा बदा दिता है, मेरा छोटा कर दिता है। की फर्क पैंदा है कि तू एक नगर दे अंदर जन्म लिया है, तू दूसरे नगर दे अंदर जन्म लिया है, मिट्टी ते के है। तो खैर आत्मिक पद्धर दा प्रेम ए सर्वोत्तम प्रेम है। आत्मिक पत्र दा प्रेम करन वाले ए नहीं वेखदे इहदा रूप रंग नसल जात भेद की है, वो वेखदे ने आत्मा मेरे विच, आत्मा ही इहदे अंदर। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, निरंकार जौवन जांदा है चला जाए, जौवन जांदा डर नहीं है, पर मैं ए चाहुंदा कि कम से कम इस जौवन दे अंदर ते खुदा तेरी होंद मैनूं नजर आए, इस जोबन दे अंदर ते मेरा प्रेम उच्चा बन जाए। बड़े जोबन मेरे गए ने शरीरां दे नाल प्रेम कर करके, बड़े जोबन गए ने, एक जोबन नहीं, सुख गए कुमलाए, कितनी जोबन, किन्ने जोबन, किन्ने जोबन गए ने मेरे अज्ञानता दे अंदर, पटकद्या पटकद्या टकरा मारद्या मारद्या, किन्ने जोबन चले गए ने। मैं जात पात दे बंधन दे अंदर बजदा रहा, मैं ईर्षा द्वेष दे झगड़े उठाउंदा रहा, निंदा चुगली दे अंदर चलदा रहा, ते जोबन खिसकदा रहा। समय ने ते नहीं टिकना, समय नूं तुसी संभालना है, संभालो, समा तां वी अपनी चाले चलदा है, समय नूं ना संभालो, समा तां वी अपने चाले चलदा है। अज दा दिन आया है, चार पैर दा जीवन लैके इन्हें बीत ते जाना है, किसे दा दिन सुकून दे अंदर ते किसे दा दिन रोंदिया धोंदिया बीतेगा, किसे दा दिन हानि दे अंदर किसे दा दिन लाभ दे अंदर बीतेगा, दिन ने बीत जाना। गया होया दिन वापस लिया के मुड़ तो इनू खर्च करना, इनू सवारना, यह साडे वस विच नहीं है। गया सो गया, इनू वापस मोड़ना साडे वस विच नहीं है। तो समा जोबन दा जेड़ा आया इन्हें चला जाना है, जोबन दे समय दे अंदर अपने बाकी फर्ज पूरे करो। गुरु साहबान रोकदे नहीं है, गुरमत वरचदी नहीं है, पर जेड़ा तुहाडा अपने लई फर्ज है वह भी पूरा करो। पातशाह सानू केवल चेता ही करा रहे ने। और भगत जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरां जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। बड़े वारे जीवन मिलदा रहा, एते कर हम बहुत बसाए, तब हम राम गर्भ होए आए। बड़े वारे जीवन मिलिया, जोबन मिलिया, पर जोबन चला गया। भगत रविदास साहब भी ऐलानिया अरदास कर रहे ने खुदावंद करीम दे सामने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ते हुण जन्म मिलिया ते जोबन ते मिले गए, कदी चलो मिल गया कदी ना मिलिया, पर समझण वास्ते कह लिए जोबन बड़े मिले। भगत रविदास साहब भी मिलदे जुलदे लफज वरत रहे ने, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निकी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो भगत फरीद साहब जी दी रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है। सब तो पहला बंदे दे मन दे अंदर मोह बनदा है, मोह और मोह दी परिभाषा इस तरह कह लईए कि जो घर दी चार दवारी दे अंदर अंदर रहे उदा नाम मोह है। घर दी चार दवारी दे अंदर अपना परिवार चंगा लगदा है, दूजियां दे परिवार चंगे नहीं लगदे। अपने बच्चे चंगे लगदे ने, दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगदे। तो मोह खतरनाक ता है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगदा है ते दूजे अपने नहीं लगदे। तो जद दूजे अपने लगदे नहीं तो फिर किसी दूजे नूं उजाड़न लग्या डर भी किस चीज दा है। जद कोई दूसरा अपना लगदा ही नहीं तो अपना नहीं ते फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी कादी है। मोह दे अंदर बंदा दूसरे नूं उजाड़ सकदा है अपने आप नूं वसाउण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नूं बंद कर सकदा है अपना कारोबार चलदा रखण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मूंह विचों भोजन खो सकदा है अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते। मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकदा है अपनियां खुशियां लई। दूसरे नूं रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओ बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ये बंदा मोह तों कुर्बानी दे जांदा है। तमाम गुणां दी मोह दे उत्तों कुर्बानी कर देंदा है। हुण थोड़ा समझ दा दायरा वधना शुरू हो जाए, इसनों सारे अपने लगने शुरू हो जान, गुरबाणी दी कथा कीर्तन सुनदिया सुनदिया गुरबाणी दा कोई वाक मन नूं चोट कर जाए, इनों सारियां विच परमात्मा नजर आना शुरू होवे, महसूस करे जिस तरह दे मेरे बच्चे ने उस तरह दे दूसरियां दे बच्चे ने, जिस तरह दा दुख मेरा है इस तरह दा ही दुख दूसरे दा, जिस तरह दा गरीबी दे अंदर मैं दुख नूं हंडा रहा गरीबी सारियां वास्ते इको जिही दुखदाई है, दूसरे लिए घट नहीं है। जिन्ना कलेश मेरे अंदर इन्ना ही कलेश दूसरे दे अंदर है। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसी नूं दुख देने तो पहला उस जगह दे उत्ते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है। अगर इस जगह दे उत्ते मैं खड़ा हुंदा ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

कम चंगा है जा बुरा है तो आप चंद समय बाद पाओगे तो वाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है। मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम, फिर विचारी जाओ, इस विचार नूं रिड़की जाओ, कुछ समा बीत जान तो बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है, चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदिया सार मैला कर्म करन वाले बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने। मैला विचार बन जाए उन्हूं समा देना, उस विचार नूं डिले करना, इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे उह मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने, जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसी वक्त मैं फिर अर्ज करांगा, अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने, जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे। दूसरे दे बच्चे दे मुंह विचों भोजन दा टुकड़ा खोह के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे, क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह की अवस्था के अंदर पहुंचा हुआ मनुख दूसरे की गरीबी, दूसरे की दीन दशा, दूसरे की भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है, ना मिटा सके ते उहदे हिरदे की डूंघाई विचों एक अरदास हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक है मेरी लोड़ है भोजन, पर दूसरे की लोड़ भी तो भोजन है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। मेरी लोड़ है कपड़ा, दूसरे की लोड़ भी तो कपड़ा है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। जो मेरिया लोड़ा ने उस समाजिक प्राणी होने के नाते सब दिया लोड़ा ने। मैं किसी दिया लोड़ा खो लवा, दाता खो लवा और अपनिया लोड़ा पूरिया करा, यह मैनू शोभा नहीं देता। फिर वो दूसरे नूं भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जांदी है ते फिर वो अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर, ते सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जांदा है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विच वो आप भी आ जांदा है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मातर सब कुछ आ जाते हैं, दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जाते हैं सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर भावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्हें ही है ना जिनी समर्था है, कर भावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवच करदा है, जो दूसरे का बुरा मंगता है एक दस्तूर है परमात्मा का बनाया होया उदा अपना बुरा हुंदा है अवच हुंदा है। दूसरे का बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन का तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे ए यतन कर रहे हो, दूसरे का भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ये नुकता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मांग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जा नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है साडे हाथ विच ते है नहीं, असी किसे दे कोलों खोई तुरे जावांगे लई जावांगे, अगर परमात्मा ही उहदी जेब भरी जा रहा है ते असी लै लै के थक जावांगे, देण वाला कदी थकदा नहीं है। तो अर्ज मैं कर रहा सा दूसरे दा बुरा करना जा बुरा मंगना इस तरह समझ लो कि तुसी अपना बुरा आप ही कर रहे हो, अपने हथां दे नाल ही अपने पैरां दे उत्ते कुहाड़ा मार रहे हो। दूसरे दा भला मंग के तुसी अपना ही भला मंग रहे हो, एक सूत्र है परमात्मा दा दस्तूर है। अगर ये नुकता समझ विच आ जाए तो धर्म दे राह दे अंदर इस नुकते दे जरिए तुहानू बहुत वड्डी सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं रीढ़ दी हड्डी दा इक मणका है सब दा भला मंगना, भला वेखना, भला सोचना।
असीं भला मंगदे भी नहीं आ, भला करदे भी नहीं आ, भला